FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार।

अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

समुसरों में देश वंदन के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। स्मरण करते हैं संकट मोचन मारुति नंदन श्री हनुमान जी को। प्रस्तुत है हरिओम शरण और साथी के स्वर में ये भक्ति रचना।

आराधना की अगली प्रस्तुति में आई श्रोताओं सुनते हैं अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में ये भजन।

अनूप जलोटा और साथियों को आपने सुना। आराधना की अगली प्रस्तुति में आई श्रोताओं सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

0: सुधा मल्होत्रा के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बात। आज सामूहिक सुझाव का विषय है कम लागत में अधिक मुनाफा, आधुनिक बागवानी की नई दिशा। जानकारी का वाचन कर रही हैं चित्रलेखा तिवारी।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। खेती के बात में आज हम अपन पर विषय लेके आए हैं जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ बागवानी। संगी हुआ जैसे कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के एक बहुत बड़े चुनौती बन गए। अब मौसम पहले जैसे नहीं रह गए, कभू तेज। आधुनिक बागवानी के नवा दिशा आज हम जानबो संगी हुआ के हम कम खर्चा में कैसे फल साग भाजी और मसाला फसल के आधुनिक तरीका ले खेती करके किसान भाई मन पर अपन आमदनी ला कई गुना बढ़ा सकत हन। त संगी हुआ आज के समय में सिर्फ धान या एके फसल के ऊपर निर्भर रहना अब फायदा के सौदा नहीं रह गए है। तब बदलत मौसम, बढ़त लागत और बाजार के उतार चढ़ाव ला देख के अब जरूरत है कि किसान भाई मन आधुनिक बागवानी अपनावाए। आधुनिक बागवानी के मतलब हवा सिर्फ फलदार पेड़ लगाना न है, बल्कि कम जमीन में वैज्ञानिक तरीका ले फल साग भाजी फूल और मसाला फसल के उत्पादन भी बढ़ावाएं। तो सब

0: सबसे पहले बात करबो सही फसल के चुनाव के बारे में। तो जैसे कि जौन इलाका में हम रहथन और जिहाँ अच्छा फसल हो सकत है, ये जानकारी तो हमारे किसान भाई मन पहले ले रहे, तो वही फसल ला लगावा जेहर आप मन ला अधिक आमदनी मिली और अच्छा फसल भी हो ही। जैसे कि अमरूद हो गए, लिमाऊ हो गए, पपीता हो गए, केरा हो गए, मुनगा हो गए, पताल, मिर्चा, भाटा, रमकेरिया, धनिया, हल्दी, अदरक, ये सब फसल हर कम समय में अच्छा आमदनी देते। दूसर बात करबो उन्नत किस्म के, तो सबसे जरूरी बात होते कोई भी हम खेती किसानी के काम करी ओकर बर चयन करना है उन्नत किस्म के पौधा। तो हमेशा प्रमाणित नर्सरी ले स्वस्थ और रोग मुक्त पौधा खरीदा, बढ़िया पौधा लगाहा तो उत्पादन घलो बढ़ी और बीमारी ओमा कम लगी। तीसर बात हो बताबो पानी के सही उपयोग के बारे में। आज के समय में पानी बचाना बहुत जरूरी है, तो एकर बार हम ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक ला अपना के 40-50% तक पानी बचा सकत हन। पानी सीधा जड़ में जाही और खरपतवार भी कम उगी और खातू के बचत घलो होही। चौथा बात करबो जैविक खातू और संतुलित पोषण के, तो गोबर खातू, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत जैसे जैविक खाद के उपयोग ले जमीन के उर्वरता बने रही थे और जरूरत अनुसार रासायनिक खातू भी डाला पर जतका जरूरत है उतके। एकर बार का करना है माटी के जांच करवाना है। माटी के जांच करवाबो तो ओकर से हमरा पता चले ये माटी में हम खेती किसानी करबो तो एमा कतका कन हमरा रासायनिक खातू के जरूरत पड़ी और उतके कन हम फसल डारी है ना भाई। जैसे कि डॉक्टर मन हमरा दवाई देते ये बीमारी है तो अतका खावा वो अतका दिन खावा, बस वैसा ही हमारे माटी के भी हम जांच करवा के ओकर जानकारी ले सकत हन। फिर पांचवा बात करबो कीट और बीमारी के रोकथाम के, तब फसल है बीमार हो जाए के बाद इलाज करे ले बढ़िया है के पहली ले बचाव करे जाए। जैसे कि फेरोमोन ट्रैप, पीला चिपचिपा ट्रैप, नीम आधारित दवाई और समेकित कीट प्रबंधन अपना के दवाई के खर्च हम कम कर सकत हन। छठवा बात करबो मिश्रित और अंतर्वर्ती खेती के, तब फलदार पौधा के बीच में खाली जगह में साग भाजी, दलहन या मसाला फसल लगा के अतिरिक्त आमदनी कमाया जा सकत है। जैसे कि अमरूद के बगीचा में धनिया, मूंग, उरीद, हरदी या अदरक लगा के हम बढ़िया उत्पादन ओकर प्राप्त कर सकत हन। ओकर बाद आगे बात करबो मूल्य संवर्धन के, तो अगर किसान सिर्फ कच्चा माल बेचते तो कम दाम मिलते, फिर अगर ओकर प्रसंस्करण कर दे जाए तो मुनाफा बढ़ जाते। जैसे कि पताल ले सॉस, आमा के अथान, अमरूद ले जैम, मिर्चा सुखा के पाउडर, हरदी के पिसाई करके ओकर पाउडर बना के ये सब करके हम बेचबो तो ओकर से आमदनी हमला अधिक मिल ही। और आठवा बात करबो बाजार के जानकारी के, तो खेती करे के संगे संग संगी हुआ बाजार के मांग जानना घलो जरूरी है। जैसे जोन फसल के मांग ज्यादा है ओला सही समय में बेच के अच्छा दाम मिल सकत है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम ले सामूहिक बिक्री करके घलो मुनाफा बढ़ाया जा सकत है। और बात करबो सरकारी योजना ले लाभ लेहे के, तब बागवानी विभाग के माध्यम ले पौधा, ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, शेड नेट, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन कई प्रकार के एकर बर अनुदान मिलते, तो किसान भाई मन अपन नजदीकी के उद्यानिकी कार्यालय ले जरूर ये जानकारी लेवा और एकर लाभ भी लेवा। आजकल छोटे किसान मन घलो आधा एकड़ या एक एकड़ जमीन में आधुनिक बागवानी करके साल भर आमदनी कमावत हवे, तो याद रखा संगी हुआ कम लागत में अधिक मुनाफा तभी संभव है जब सही योजना, सही तकनीक और सही बाजार के जानकारी रही।
1: कम लागत में अधिक मुनाफा, आधुनिक बागवानी की नई दिशा, इस विषय पर खेती की बात में सामूहिक सुझाव अभी हम साझा कर रहे थे। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 6:35 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है तुलसीकृत श्री रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।
2: एपिसोड नंबर 133।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

तुलसीकृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2।

0: प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है भक्ति। आलेख और वाचन स्वामी आत्मानंद का है।
1: हम अपने पूजा घर में बैठकर भगवान का भजन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं। हम मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करते हैं और हमें लगता है कि हम भक्त हैं। लोगों के साथ मिलकर हम धार्मिक आयोजन करते हैं और हम समझते हैं कि हम भक्त हैं। ये सब धारणाएं सही हैं, पर भक्ति की एक और भी अवस्था है जिसे सही मायने में सच्ची भक्ति कहा जा सकता है, और वह है ईश्वर को पूजा घर, मंदिर और धार्मिक आयोजनों के बाहर भी देखना। यदि यह सही है कि यह जगत ईश्वर से ही निकला है और उसी में स्थित है, तब इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर विरहित हो। संसार में सर्वत्र वही ईश्वर रमा है और उसकी भक्ति जैसे पूजा घर, मंदिर और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से की जा सकती है, वैसे ही अपने हर कर्म के माध्यम से भी। इस प्रकार सच्ची भक्ति की अवस्था वह है जहां हमारा हर कर्म भगवान की पूजा बन जाता है। गीता में अर्जुन को सारा उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण उपसंहार करते हुए कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षिणु, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अर्थात अपने अपने कर्म में लगे रहकर मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। अपने कर्म में लगे रहकर वह किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, वह उपाय तुम मुझसे सुन। जिस सत्ता से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति का हर कर्म भगवान की पूजा बन जाता है, तब उसके लिए मंदिर और प्रयोगशाला में भेद नहीं रह जाता। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के समग्र ग्रंथ, जो हिंदी में विवेकानंद साहित्य के नाम से प्रकाशित हुए हैं, की भूमिका में लिखती हैं, यदि एक और अनेक सचमुच एक ही सत्य हैं, तो केवल उपासना के ही विविध प्रकार नहीं, वरन सामान्य रूप से कर्म के भी सभी प्रकार, संघर्ष के सभी प्रकार, सर्जन के सभी प्रकार भी सत्य साक्षात्कार के मार्ग हैं। अतः लौकिक और धार्मिक में अब आगे कोई भेद नहीं रह जाता। कर्म करना ही उपासना करना है, विजय प्राप्त करना ही त्याग करना है, स्वयं जीवन ही धर्म है। वे आगे लिखती हैं, स्वामी विवेकानंद की यही अनुभूति है जिसने उन्हें उस कर्म का महान उपदेष्टा सिद्ध किया जो ज्ञान भक्ति से अलग नहीं वरन उन्हें अभिव्यक्त करने वाला है। उनके लिए कारखाना, अध्ययन कक्ष, खेत और क्रीड़ा भूमि आदि भगवान के साक्षात्कार के वैसे ही उत्तम और योग्य स्थान हैं जैसे साधु की कुटी या मंदिर का द्वार। उनके लिए मानव की सेवा और ईश्वर की पूजा, पौरुष तथा श्रद्धा, सच्चे नैतिक बल और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है। एक बार उन्होंने कहा था, कला, विज्ञान एवं धर्म एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के त्रिविध माध्यम है। अस्तु, विदेशों की यात्रा से लौटने के बाद रामेश्वरम के मंदिर में भाषण देते हुए स्वामी विवेकानंद ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा था, वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है, वही सचमुच शिव की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है, तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति पाति अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार करके की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान हैं, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे।
0: भक्ति, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आलेख और वाचन स्वामी आत्मानंद का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए दिन में 11 बजे। मोर भुया छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका का ये कार्यक्रम हम रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा सुबह 8:30। रायपुर से ही रिले करेंगे कार्यक्रम उजाले की ओर। समय होगा दिन में 10 बजे से। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का, और 10:30 पर हम लेकर आएंगे नए तराने। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा। शेष समय संध्या 5 बजे तक और रात्रि 9:15 से 11 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर वोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम अमृतधारा हम लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। इसमें नाक कान गले की सामान्य बीमारियां और बचाव की जानकारी देंगे डॉक्टर राजेंद्र जोशी। भेंटकर्ता और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। प्रसारण समय होगा आज शाम 5:05। श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण होगा शाम 5:35 पर। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह का समापन। क्रम पर्यटन स्थल में मंदिर दर्शन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की बातें भी होंगी। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकुर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का प्रसारण होगा शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोठ में चर्चा करेंगे कृषि विकास में सरकारी योजनाओं के योगदान की। किसानवाणी में आत्मनिर्भर भारत मीठी क्रांति की बातें होंगी। साथ ही होगा क्रम किसानवाणी गांव में। इसमें ग्राम बहराडी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य रिकॉर्डिंग कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। साथ ही मंडी मौसम की जानकारी गीत और सामूहिक सुझाव भी साझा किया जाएगा। श्रोताओं ये तो थी जानकारी आज के कुछ शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपम हिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि अब इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से

0: रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

बरसती बूंदों ने धरती को यूं संवार दिया, हर सूखे मन में उम्मीद का फूल खिला दिया। भीगी भीगी सुबह का ये प्यारा सा पैगाम है, हर नए दिन में छिपा एक नया मुकाम है। श्रोताओं, बारिश केवल मौसम ही नहीं बदलती बल्कि मन की धूल को भी धो देती है। पेड़ों की हरियाली

मिट्टी की सौंधी महक, ठंडी हवाओं का स्पर्श जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। और इस खुशनुमा सुबह में स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी सुधी श्रोताओं का। कीजिए स्वीकार अपने साथी महावीर बरगाह का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, मौसम का परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठंड, फिर गर्मी, फिर बरसात, और ये प्रकृति के लय हैं। यदि ये लय बिगड़ता है तो फिर प्रलय बन जाता है। इस कुदरती लय को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज है वन। वनों से ही जीवन संभव है। आज जुलाई माह की 7 तारीख है और वन महोत्सव सप्ताह का समापन भी है। श्रोताओं, भले ही तारीख के हिसाब से ये समापन तिथि है, लेकिन वनों की महत्ता तो हर दिन, हर क्षण, बल्कि हर सांस में समाई होती है। बरसता मौसम कुदरती तौर पर हमें याद दिला रहा है कि हम पौधे रोपें, उन्हें बचाएं, जतन करें। पौधरोपण के लिए ऐसे स्थानों का चयन करें जहां वे सुरक्षित पनप सकें और विशालकाय वृक्ष बन सकें। श्रोताओं, धरती में हरियाली लाने में हम अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं, अवश्य विचार कीजिए, और सटीक सकारात्मक प्रयास भी। इस नेक प्रयास के लिए हम आपको भेज रहे हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और ये प्यारा सा गीत भी।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

श्रोताओं, बरसात की बौछारें हरियाली पानी जीवन तो लाती हैं, साथ ही साथ बाढ़, प्राकृतिक आपदा, बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी इन दिनों सामने आती हैं। यही नहीं, जीवन दायिनी ये मौसम कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं को भी पनपने का पर्याप्त अवसर देता है। सर्पदंश की कई घटनाएं इन दिनों सुनने को मिलती हैं। मित्रों, हर सांप विषैला नहीं होता है, इसलिए घबराने डरने जैसी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, सावधानी सजगता बेहद जरूरी है। अंधविश्वास झाड़ फूंक के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े, यथाशीघ्र चिकित्सक तक पहुंचने का प्रयास करें। इसी तरह श्रोताओं, इन दिनों कई तरह के कीट पतंगों की फौज भी रहती है, मच्छरों का भी आतंक रहता है, तो सावधानी यहां भी आवश्यक है। मच्छरदानी का प्रयोग सबसे अच्छा विकल्प माना गया है। बरसात के इन दिनों जमीन पर ना सोएं। श्रोताओं, बरसात के मौसम का एक और दुष्प्रभाव यह होता है कि इन दिनों भोजन खाद्य सामग्री बड़ी तेजी से खराब होने लगते हैं, इसलिए यथासंभव ताजा गर्म भोजन ही खाएं। पानी का दूषित होना भी बेहद आम बात है बरसात के इन दिनों में, तो सावधानी यहाँ भी आवश्यक है, यानी कि पानी हम उबाल कर छान कर उसे स्वच्छ पेयजल बना सकते हैं। श्रोता मित्रों, प्रकृति के हर मौसम का हर रंग का अपना मजा है, अलग अलग महत्व भी है। बरसात के इस सुहावने मौसम का भी भरपूर आनंद लीजिए, बस थोड़ी सी सावधानियों के साथ, ताकि रिमझिम फुहारों में गर्म चाय पकौड़े का आप आनंद तो लेते ही रहेंगे। बिल्कुल लीजिए, हम आपके इस खूबसूरत पलों में घोल रहे हैं गीत संगीत की एक और मिठास, आनंद लीजिए।

0: कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
1: स्वीकार कीजिए सादर अभिवादन उमा शंकर पांडे का और लीजिए सुनिए यातायात संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज प्रातः 7:15 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक जैन इंटरनेशनल स्कूल मुंगेली रोड सकरी से सकरी बटालियन तक क्रॉस कंट्री अर्थात दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 4 किलोमीटर की होने वाली इस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 475 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। चूंकि यह हमारे जिले के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, यद्यपि इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस पूरी व्यवस्था के साथ तैनात होगी, फिर भी आयोजकों से विशेष अनुरोध है कि यह ध्यान देवे कि प्रतियोगी विद्यार्थी पूरी सड़क में फैल कर न चलते हुए सड़क के किनारे चलें, कतार में चलें। आम यातायात प्रतियोगिता से किंचित मात्र भी प्रभावित न हो। इस बीच आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर उन्हें तत्काल साइड भी देवें। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र की सड़कों के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, इस वर्ष की भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से गर्मी के दिनों में शहर के चौक चौराहों में रेड सिग्नल में लोगों को

0: सिग्नल के इंतजार में खड़े न होना पड़े, इस मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर हमारे बिलासपुर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सिग्नल को बंद करवा दिया था। गर्मी की विदाई एवं वर्षा ऋतु के आगमन होते ही तापक्रम सामान्य होने पर शहर के सभी चौक में लगे सिग्नल को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ध्यान रहे, लगभग 3-4 माह से सभी चौक में बिना रुके जाने की आदत बन गई है। सभी से अनुरोध है अपनी इस आदत को बदल डालें, क्योंकि सिग्नल जब करते ही 2000 रुपए का चालान तत्काल आपके पास आ जाएगा, अतः चेतन रहें। दोस्तों, मानसून का शुभागमन हमारे जिले में हो चुका है, वर्षा भी लगातार हो रही है, वर्षा के साथ साथ बिजली भी चमक रही है। यदि आप कहीं आ जा रहे हैं इस बीच वर्षा होने लगे तो वर्षा से बचने किसी भी वृक्ष के नीचे खड़े ना होएं। आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका रहती है, कई बार ऐसी दुर्घटना भी हो चुकी है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, यातायात नियमों का पालन करें।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। इसे हम एक बार और सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। श्रोताओं, अनेक धर्म संप्रदायों का संयुक्त रूप है हमारा भारत। हम किसी भी धर्म की किताब को पढ़ें या उनके सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें तो सभी में एक बात समान रूप से मौजूद है और वो है क्षमा। क्षमा या माफी के लिए वैश्विक स्तर पर आज की तारीख यानी 7 जुलाई भी समर्पित है। स्वयं से भूल होने को स्वीकारना या किसी दूसरे की गलतियों को सहज रूप में स्वीकारना ही क्षमा करने का स्वरूप है। इसलिए गलतियां होने पर क्षमा मांगने में संकोच न करें। इसी तरह से कोई अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा हो तो खुले मन से माफ करने में भी विलंब न करें। विश्व क्षमा दिवस का उद्देश्य लोगों को क्रोध और द्वेष त्यागने, मानसिक शांति पाने और बेहतर रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो रिश्तों में सुधार लाने के साथ साथ हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करता है, संबंधों में मिठास घोलता है।

0: श्रोताओं, आपसी संबंधों में मधुरता की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आज सुबह के इस अंग से दे अनुमति अपने साथी महावीर बरगाह को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।
1: से बेहतर कुछ नहीं।
0: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

फिल्म आक्रमण का गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आक्रमण फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आनंद बख्शी की ये रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मोहम्मद रफी की आवाज है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म सूरज और चंदा से।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
6: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत धारा आप सुन सकेंगे आज शाम 5:05 पर। इसमें कान नाक गले की सामान्य बीमारियां और बचाव के संबंध में जानकारी देंगे डॉक्टर राजेंद्र जोशी। भेंटकर्ता और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतन की। समय होगा आज शाम 5:05। और अब कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इला रूण लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गीत। आनंद बख्शी की रचना है, शिवहरि का संगीत और फिल्म है लम्हे।

कार्यक्रम में आई श्रोताओं अब सुनते हैं गुलजार की ये रचना। विशाल का संगीत है, आवाजें हैं ए हरिहरन, सुरेश वाडेकर और साथियों की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म माचिस से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह, ऋचा शर्मा और साथियों का गाया ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, एआर रहमान का संगीत और फिल्म है ताल।

ताल, इस फिल्म का गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह, ऋचा शर्मा और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की रचना थी और AR रहमान का संगीत। इसी गीत के साथ ही श्रोता हूँ, कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंग यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की

0: समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रेनफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज

0: मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मल सुनवाथन छत्तीसगढ़ के खेत, किसान और साहित्यकार ए विषय में वार्ता, और वार्ताकार हमें डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा। नोनी के पाख ये कहानी आप मन सुनिया श्री शेष नारायण गुप्ता ले, और कार्यक्रम के आखिर में आप मन सुनवाबो कविता पाठ श्रीमती मधु तिवारी ले। श्रोता साथी हो, आवा सबसे पहली आप मन सुनवा थावन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ के खेत, किसान और साहित्यकार। वार्ताकार हावे डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा।
1: मोर भुइयां कार्यक्रम हा छत्तीसगढ़ के सबो लोक विधा ला जन जन में बगराए के बहुत सुघर काम करत है। आज बात करबो हम खेत, किसान और साहित्य। खेत, किसान और साहित्य तीनों हमार संस्कार, उन्नति, परंपरा, संस्कृति की धुरी होते। तीनों एक दूसर के पूरक होते। खेत हावे तो किसान है, किसान है तो खेत है, और खेत और किसान है तो साहित्य हावे। खेत हमार जिंदगी ला जिए के आसरा देते, अन्न उपजा के देते। जिंदगी है तो सृष्टि है, अगर खेत खत्म तो जिंदगी खत्म, सृष्टि खत्म, ये परम सत्य हावे। किसान अपन जांगा टोर के खेती करते, किसिम किसिम के अन्न उपजाते, खुद जीते और दूसर ल जिए के भरोसा देते। अब गोट बात छत्तीसगढ़ के खेती के करतन, तो पूरा देश में छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा

के सम्मान दिए जाते। हमर माटी उपजाऊ हवे, हमर नदिया जलवायु हमर अनुसार हवे, हमर किसान मन मेहनती है, यही हमर राज के पहचान हवे। खेती हमर जीवन के मुख्य स्रोत है, हमर आर्थिक आधार हवे। हमर खेत, हमर माटी लोक जीवन के रक्षक है, त लोक संस्कृति और लोक गीत के जन्मदाता घलो हवे। नवा रचनाकार जब भी गीत लिखते तो काखर ऊपर लिखते, अपन खेत, अपन माटी, खेत खार, नरवा नदिया, रुख राई, पशु पक्षी, अपन गांव ऊपर लिखते। ओला प्रेरणा कहाँ ले मिलते? खेत ले, माटी ले। हमार खेत केवल अन्न ही नहीं उपजा रहे, बल्कि लोकगीत, कहावत, कहनी, संवेदना और संस्कार भी ले जन्म देते। और किसान, किसान हमार धरती के भगवान ही। कैसे? किसान अपन मेहनत, साहस, धैर्य, संस्कार, अपन परंपरा और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते, तभे तो भगवान के दर्जा दिए गए हावे। और तभे तो कवि गाते ना कि धन धन रे मोर किसान, मैं तो तोला जाने भैया, मैं तो तोला माने भैया, ए भुइया के भगवान, धन धन रे मोर किसान। खेती में चार मासी काम नहीं हुए, बल्कि बारह मासी काम होते। यही मेरन काम करत करत लोक भाव, लोक गीत की उत्पत्ति होते। खेत में काम करत करत माटी व सम्मान उत्पन्न हो जाते, ओकर संग मया हो जाते। तभे तो जन कवि लिखते कि मोर रग रग मा हे दया मया, मैं महाभारत के गीतायाँ, मोर हाड़ा बजुर बरोबर हे, मैं वीर दधी चिदानी आऊँ रे, मैं छत्तीसगढ़ के माटी आऊँ, मैं छत्तीसगढ़ के माटी आऊँ। आऊ जनमन से अपील घलो करते कि मोर राजा दुलरवा बेटा, तय नंगरिहा बन जाबे, पानी पियाए बर धरती ला तय बदरिया बन जाबे, और हरियर सबके मन ल रखे बर लहरिया बन जाबे, तय नगरिया बन जाबे। छत्तीसगढ़ के किसान मन धान के खेती ज़्यादा करते, फिर अब गेहूँ, दलहन, तिलहन, मक्का और साग सालन, पशुपालन, मछली पालन, कीट पालन के भी खेती करत हवे। ये सब खेती वर्षा के आधार में होते, तेकरे कारण किसान के पूरा जिंदगी प्रकृति से गहराई से जुड़े होते। खेत के जतनई से लेके बिजहा बोवई, पौधा के जागना, तैयार होना, ओकर कटई, मिसई, जतनई, ये सब्बो चरण है ना लोक परब कस होते। यही काम बूता के बखत में हमर लोकगीत के राजा ददरिया के जन्म होते। धान बोवई, खेत जोताई, निंदई, पानी पलोई, दवई छींचत, धान लुवई, मिसई बेरा में मन के भाव ह जुबान में गीत के रूप में आ जाते। ए बखत बेरा के भावला कवि मन अपन अपन अनुसार बहुत सुंदर लिखे पड़े हावे। कुछ मैं आप मन ला सुनात हूँ कि आगू नगरिया के बैला हावे लाल, आगू नगरिया के बैला हावे लाल, ज्यादा माया झन करबे हो जाही जी के काल। तो दूसर कवि लिखते कि बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कांदे के सुन। तो तीसरैया लिखते कि बागे बगीचा दिखे ल हरियर, झुलुप वाला ने दिखे बदे हो नरियर। ते घनौ लिखते कि पीपर के पाना डोलत नहीं है, का होगे टूरी है बोलत नहीं है। ऐसना सब लोकगीत के जन्म खेत कार में होते, प्रकृति सुंदर होते, ओकर सौंदर्य दर्शनी और पूजनी होते। तेखरे से तिर किसान किसानिन के ददरिया में जुवानी, प्रेम, प्यार, सिंगार, योग वियोग के वर्णन होते। यही अर्थ तो साहित्य आए, जिहर मन के भावला खोल के बयान कर देते, वही तो साहित्य है। और खेत के ऊपर कथा कहानी तक लिखे गए हैं। हमार छत्तीसगढ़ में खेत ल केवल अन्न उपजाए के साधन नहीं माने जाए, बल्कि खेत जिंदगी, मेहनत, धीरज, आशा, संस्कृति, संस्कार, उपहार के प्रतीक माने जाते। तो वहीं किसान के मेहनत, सरलता, सहजता, दया, विनम्रता और प्रकृति से लगाव, सम्मान, मानवीय संवेदना से भरे साहित्य की उत्पत्ति कर देते। एकरे से तिर यहाँ के लोकगीत, कथा कहानी, कविता में खेती, हरियाली, माटी, नरवा नदिया और किसान के जांगा टोर मेहनत के जम के वर्णन होते। गीत मन में जीवंत चित्रण मिलते। खेती बर पानी ला मोती के समान माने गए हैं। तभे तो जब बादल उमड़ घुमड़ के बरसते तो कवि कही थे, झिमिर झिमिर बरसे पानी, देखो रे संगी देखो।

छोरे साथी मोती झरे कपड़ा छानी झिमिर झिमिर बरसे पानी। और ये भी कही थे कि घानी मुनि घोर दे पानी दमोर दे छत्तीसगढ़ भुइया लद्दू दही मा बोर दे। छत्तीसगढ़ के साहित्य किसान और ओखर गांव के जीवन शैली के सजीव प्रकाशन करते जस के तस बयान करते किसान के संघर्ष जुझारू पल्ला अपन लेखन में प्रमुख स्थान लेखक मन दिए हावें। स्वर्गीय हरि ठाकुर लक्ष्मण मस्तूरिया पवन दीवान कोदूराम दलित पालेश्वर शर्मा श्यामलाल चतुर्वेदी नारायण लाल परमार नरेंद्र देव वर्मा रामेश्वर वैष्णव रामेश्वर शर्मा पी सी लाल यादव दानेश्वर शर्मा संतोष कश्यप जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मन खेती किसानी के सुख दुखला प्रमुखता से अपन रचना में उकेरे हावे। लोक मंच के कलाकार मन गांव के गवई पनला लोक नृत्य नाटक के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए हावे। त नाचा कलाकार मन गांव के रहैया मन के पीराला व्यंग्य शैली में उजागर करे हावे। छत्तीसगढ़ के किसान की जिंदगी खुशहाल ही नहीं रहे कभू कभू दुख भरे होते जब पानी नहीं गिरे तो मुड़ धर के बैठ जाते तब कवि के कलम चलते कि लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार ठगवा कस पानी है ठगे है मुड़ धर बैठे किसान ए विधाता गमोर कैसे बचाबो परान संगवारी गमोर कैसे बचाबो परान। दूसरा तरफ किसान की सिधवापन और ओकर शोषण ऊपर घलो कवि मन चुप नहीं रहे और मुखर होके बोलते कि नून बासी रोटी खाके लहू पसीना बहा के गरीब कमैया कहाए तोर कमाई में बन गए चारो धाम अढ़ा मोर किसान। रोज ओकर भाषण सुन के सोचे तय भोला राम तोर अड़बड़ है मान तय जिताए वो बन गए भगवान अढ़ा मोर किसान अढ़ा मोर किसान। आप सब जाना था कि लॉकडाउन के बखत में सरी देश ला भातदार कौन परोसिस कौन पुरोइस हमर किसान और केवल किसान। सरी देश के मनखे मन के जिंदगी के बचोइया हमर किसान हमर भगवान है। उनकर बन न तो पटाखा फूटिस न ताली बजिस तब होले मुड़ी नवा के देश सेवा में अपन जीवन ल होम दिस। सही बात है कि सियासत दानमान ओखर सुखद भविष्य पक्का विचार कभू नहीं करिन तभे तो कोदूराम दलित जी कहिन कि जाड़ घाम बरखा के दुख सुख सहे किसान बिचारा अदाई ददा बन के डारे सबके मुँह चारा पहने ओढ़े कमरा खुमरी अ चिरहा असन लंगोटी अ पिए पसिया पेज खाए कनकी कोढ़ा की रोटी। छत्तीसगढ़ के खेती किसानी और किसान के पीराला संवेदनशील मनखे कवि लेखक साहित्य मनीषी पत्रकार मन ही महसूस कर सकत है। वही बन के कलम के धार किसान मन के हक में चलते ओमन किसान ला प्रेरित भी करते कि उज्जर उज्जर घर कुरिया अंगनाला सुघर बनाना है प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है कि धान राहेर उर्दा सोया सरसों गहूँ उपजाबो अ किसिम किसिम के बिजहा भर माटी ला सरसाबो रहन चमास उघरा अब कुर्ता नवा पहिराना है प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है। ऐसा प्रेरक रचना ले किसान साथी मन प्रेरित घलो होते और खेती के नवा नवा तकनीक अजमाते तभे कवि कहते कि सूजी ले साइबर तक और तरिया ले बांधा तक हमर राज ल सिरजे पर विश्वकर्मा बन जावाओ रे धान कटोरा रहिस तैहा अब बनही रतन के थारी अब पुरखौती गुमान छोड़ के उन्नत के जिहा जुड़ावाओ रे विश्वकर्मा बन जावाओ रे। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के संगे संग बारामासी तिहार घलो चलत रही थे। ये तिहार मन के सोच संबंध खेत और ओकर उत्पादन से जुड़े होते पानी अच्छा गिरीस तब अच्छा फसल त किसान की दीवारी ही दीवारी और कहूँ अकाल पड़ गए तो भूखमरी और बेगारी। फिर कुछ हो है, किसान अपन खेत ला नहीं छोड़े और अपन मन के भाव ला भी नहीं छोड़े। आषाढ़ से लेके फागुन बैसाख तक किसान की गतिविधि रोमांच रोमांस के वर्णन छत्तीसगढ़ी गीतकार मन करते त कहानीकार मन अपन कथा में प्रमुख पात्र किसान ला बनाते और सकारात्मक पहल करते। सावन के महीना सब लब आते तो किसान किसे बहाँची वह आनंद उठाते अपन किसानिन की सुरता में गाते पुरवैया
सनन सनन झिमिर झिमिर गिरे पानी, अजोड़ी के रंग मरंगे सांवरी रच।

0: चाय मेहंदी, ऊपर ले बरसा हुआ पानी, छमर छम छम छम, अब बाजत है पैरी सहीन, छनर छनर छन छन छन, नगरिया जोते तन तन, देख सावन के बूंदी, जोड़ी के रंग में रगे, सांवरी रचाए मेहंदी। किसान के जिंदगी ऊपर कतको गायक मन गा के अमर हो गए, जिसे केदार यादव, मिथिलेश साहू, ममता चंद्राकर, कविता वासनिक, लक्ष्मण मस्तूरिया, बैताल राम साहू, पंचराम मिर्जा, गोरेलाल बर्मन, शेख हुसैन, कुलवंतीन बाई, रेखा दीवार, बहुत अकन नाम है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार मल्ला उभारे में दाऊ रामचंद देशमुख, दाऊ मंदरा जी, खुमान साव, दीपक चंद्राकर जैसे मनीषी मन के जब्बर हाथ है। छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार हीरा लाल काव्य उपाध्याय, सुंदर लाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, परदेसी राम वर्मा, निरूपमा शर्मा, अशोक बंजारा, मंगत रविंद्र, रामनाथ साहू, हर प्रसाद नीडर मन के रचना में किसान और ओखर जिगरी संगी खेत, ओखर मितानी, ओखर जिंदगानी के जीवन दृश्य देखे भर मिलते। आखिर मस्त सबोल सकेल के कह सकत हन कि छत्तीसगढ़ में खेत, किसान और साहित्य एक दूसर के संगी संगवारी आए, तीनों एक दूसर के धरखन हावे। खेत किसान के जिए के साधन हावे, किसान राज के समृद्धि के आधार हावे, तो साहित्यकार एमन के जीवन संघर्ष के गवाही हावे। छेवरहा मैं कह सकत हूँ छत्तीसगढ़ हा खेत, किसान और साहित्य के दम से समृद्ध बनी और बनी खचित बनी। जय जोहार, नमस्कार।
1: छत्तीसगढ़ के खेत, किसान और साहित्यकार, ए विषय में अभी आप मन वार्ता सुनत रहे हो डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा ले। कार्यक्रम में आगू बढ़त हावन और आप मन सुनवात हावन कहानी जेकर शीर्षक हावे नोनी के पाक, और ये कहानी आप मन सुनवात है श्री शेष नारायण गुप्ता।
2: एक नानकुन गांव करंजी में सुमरौतीन बाई नाम के माई लोगन रहिस, और अपन 16 साल के बेटी पुत्री संग जीवन काटत रहिस। पुत्री 8वीं तक पढ़े रहिस, फिर गांव के लोग कहिन अब नोनी ला घर के काम सिखा, पढ़ लिख के का करही, आखिर में तो चूल्हा चौका संभालना है, ओला घलो ससुराल जाना है, वहाँ सास ससुर देवर ननंद के सेवा करही, तभे ओका जिंदगी हर पहाही। सुमरौतीन के मन में भी डर रहिस, गांव के सरपंच के बेटा के नज़र पुत्री ऊपर पड़ गए रहिस। वो कहत रही से बाई तोर बिटियाला हमार घर के पत्तो बना दे, पढ़ाई लिखाई के जरूरत नहीं है, मोर घर में आही तो राज करही। पुत्री हर रोज गांव के स्कूल के छत ला देखत रहिस, वहाँ आंगनबाड़ी के दीदी रमा सबो लइका मन ला पढ़ावत रहिस। एक दिन पुत्री रमा दीदी ला पूछिस, दीदी का मैं बड़का होके तोर जैसन बन सकत हाँ, महू पढ़ लिख के अपन जिंदगी ला संवारना चाहत हाँ। रमा दीदी मुस्काइस, काबर नहीं, तय मन तो ठान ले तो कसब हो सकत है, काल हमार गांव में स्व सहायता समूह के मीटिंग है, तोर दाई ला संग लेके आवे, समूह में सबो जन के संग बैठ के नवा नवा बात सीखी और अपन जिंदगी ला सुधारिया। मीटिंग में रमा दीदी समझाइस, सरकार बिटिया मन बर बहुत योजना चलावत है, हमर समूह के सबो बहनी मन बर अब अपन अपन काम करे के उपाय बतावत है, अब कोनो के आश्रित हमन नहीं रहन। सुमरौतीन के आँखी खुल गए, वो पुत्री के हाथ धर के कहिस, बिटिया ते पढ़, मैं तोर संग हूँ। बिटिया पढ़ते लिखते तो दोनों कुल मैके और ससुराल ला तार देते। गांव वाला हसीन, ते का कर ली, ए सरपंच धमकाइस, फिर सुमरौतीन डरे नहीं, वो समूह में जुड़ गए, लोन लेके दोना पत्तल बनाना सीखीस, पुत्री फिर ले स्कूल जाए लगीस, अब जिंदगी के गाड़ी अच्छा ल चले लगीस। 3 साल बाद पुत्री 10वीं पास कर लीस और सिलाई में भी होशियार हो गए, सुमिनिन के दोना पत्तल के काम चल निकरीस, अब वो गांव के और बाई मल्ला भी काम सिखावत रहिस। दोना

0: पत्तल बना के आसपास के गांव और शहर तक म होटल म पहुँचे लगीस। दोना पत्तल ले पर्यावरण के भी रक्षा होए लगीस। पेड़ के हर जिनिस हर जियत भर मनखे मन के संग चलते। एक दिन उही सरपंच के बेटा अपन मेहराऊ बर ब्लाउज सिलवाए आइस। पुत्री ल देख के ओकर सिर झुक गे। पुत्री कहिस, भैया नारी ल कमजोर मत समझ, मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकत है। आज पुत्री गांव के स्कूल में सिखाई सिलाई सिखाते। सुमरौतिन के समूह में 30 ठन बाई मन जुड़ गए है। सबो अपन खाता में पैसा जमा करते। पुत्री के हिम्मत देख के गांव के और के बिटिया मन भी के मन में आस जगीस। रुकमणी, सगुनी और छोटी बुधनी हर रोज पुत्री के सिलाई सेंटर में आवत रहीन। पुत्री उकर मशीन सिलाना, मशीन सिखाना, नाप लेना और डिजाइन बनाना सिखावत रहीस। फिर गांव के कुछ बूढ़ा मन ले बात खटक गए। एक दिन पंचायत बैठीस। बैगा बाबा कहे, सुमरौतीन तोर बिटिया गांव के रीति रिवाज बिगाड़त है। लड़की मन अब घर के काम छोड़ के मशीन ठोकत है। ये हमार संस्कृति के खिलाफ है। सुमरौतीन अब डरने वाले नहीं रहीस। वो खड़े होके कहीस, बाबा संस्कृति के नाम ले हम कब तक बिटिया मन के पाँख लग काटत रहो। मोर आदमी के मरे ले 5 साल हो गए। अब मैं हाथ पर नहीं चलाहा तो आज मैं और मोर बिटिया भीख मांगत रहतीन। काम करना का संस्कृति के खिलाफ है। रमा दीदी के साथ दे इस शासन की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महतारी जतन योजना हमर बर ही तो बने हैं। बिटिया पढ़ी लिखी तभी तो गांव आगे बढ़ी। बात बढ़ गए, सरपंच के बेटा फिर से अड़ंगा डारिस और रात में पुत्री के सेंटर के ताला तोड़ दीस और सबो मशीन में माटी भर दीस। बयान होइस तो पुत्री देख के रो पड़ीस। गांव के बाई मन जब ये सुनीन तो पहली बार एकजुट हो गए। 30 ठन बाई मन लाठी लेके सरपंच के घर पहुंच गईन। सुमरौतीन गरज के कहेस, बहुत सहलेन, अब हमार बिटिया के कोनो आँख उठा के देखी तो हम चुप नहीं बैठबो। एक खबर कलेक्टर तक पहुँचीस। कलेक्टर मैडम खुद गांव आईन। पुत्री के काम देख के बहुत खुश हो गईन। उकर आदेश में पुत्री ला 5 लाख के अनुदान मिलीस। नया मशीन, कपड़ा और पक्का कमरा भी बन गए। पुत्री और सब महिला मन खुशी ले झूम उठीन। 5 साल बाद आज करंजी गांव के नाम बदल गए हैं। अब लोग उहला नोनी के पाँख कथें, नोनी के पाँख के गांव कथें। पुत्री के सिलाई संगवारी केंद्र मत 60 ठन बाई काम करते हैं। रुकमणी अब समूह के अध्यक्ष है। सगुनी ऑनलाइन आर्डर लेके ब्लाउज डिजाइन करते। छोटी बुधनी शहर में फैशन डिजाइन पढ़ते। नवा नवा फैशन सीख के गांव के महिला संगवारी मन ल सिखाए लगीस। सुमरौतीन अब गांव के सरपंच है, पहली महिला सरपंच। वही पंचायत भवन में जहां कभू ओकर बेइज्जत होए रहीस, आज वो बिटिया मन के हक में फैसला सुनाते। गांव में एक पेड़ माँ के नाम योजना ल लागू करके हर गण में पेड़ लगाते। एकर अभियान वो छेड़ दे हवा। पिछले महीना वही सरपंच के बेटा अपन बेटी लेके आए रहीस। हाथ जोड़ के कहीस, दाई मोर से गलती हो गई रहीस। मोर बेटी ला भी तोर जैसे बनाना चाहा था। इला अपन संग में रख और इहूल आगू बढ़ाओ। सुमरौतीन मुस्का के कहीस, बेटा देर आए दुरुस्त आए। बिटिया के पाँख कांटे वाला नहीं, उमन ला आसमान दिखाने वाला बन। अब जुन्ना जमाना गुजर गए। महिला मन भी पुरुष के कंधा ले कंधा मिला के चल सके, ये तैयार होना और सबको इला जरूरी है। आज करंजी के हर घर में 1 ठन सिलाई मशीन है और हर नोनी के आँख में 1 ठन सपना। काबर कि एक सुमरौतीन के हिम्मत ले पूरा गांव के तकदीर बदल गए। गांव में पैसा बरसे लगे है और हर तरफ खुशहाली दिखते।
1: अभी आप मन श्री शेष नारायण गुप्ता ले कहानी सुनत रहा, जेकर शीर्षक रही सावय नोनी के पाख। कार्यक्रम में आगे बढ़त हन और आप मन ल सुनवात हन कविता पाठ श्रीमती मधु तिवारी ले।

0: दुलार है।
1: अभी आप मन श्रीमती मधु तिवारी ले कविता पाठ सुनात रहे हो। अब एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, 9:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संजय छैल की शब्द रचना और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत। मुझे क्या

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में फिल्म से। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। हैरिस जयराज ने इस गीत की धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। समीर के ही बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

श्रोताओं, आज है अभिनेता दिलीप कुमार की पुण्यतिथि। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और अमर किरदार सदैव भारतीय सिनेमा के इतिहास को रोशन करते रहेंगे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। और अब से कुछ ही देर में आज आप कार्यक्रम सुनेंगे आज की फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नरानिया को नमस्कार।

मार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हर किस नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए और हमारा हिंदुस्तान को

0: तुम्हारा दिल नहीं, चिल्लाऊंगी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
2: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एस यू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ क्या? नहीं बता सकती।
3: मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कर सकती है। इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी ना हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
4: यह आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है। मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
2: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अपने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

0: गुण चुनी तुमने, सुनी ये गूंज। ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के भदम की। ये गूंज है उस भारत की ढेंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे तुम? मुमकिन है? नामुमकिन। जब जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे, इस देश का ये तिरंगा।
1: सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार ने क्या समा बांधा था, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रह गया कि दिलीप साहब ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। जरा एक अंश सुन ले, फिर आपको सुनवाते हैं सबसे पहले दिलीप कुमार ने किस फिल्म में कौन सा गाना गाया था।
2: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी,
3: तो क्या कहा आपने?
2: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पिया देवदास।
2: क्या?
1: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सको।
2: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए।
1: यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
2: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
0: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार, साल 1966।
3: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूँ वो बदबख्त, वो बदबख्त मैं हूँ जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है। वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं। ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगा दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूँ, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए धरती के उस कोने में जहां

0: आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
1: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
2: पुलिस वाला कहाँ से आ गया?
3: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट।
2: क्या?
3: सुपरिटेंडेंट गुपरिटेंडेंट।
2: अरे क्या बकता है?
3: गुड मॉर्निंग।
2: छोड़।
3: गुड मॉर्निंग।
2: छोड़ हाथ।
3: गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4।
2: अरे 1 2 3 4।
3: मैं कहती हूँ 1 2 3 4।
2: तुमने थप्पड़ रखे।
3: एंटी फैन सेंटीमेंट।
2: क्या?
3: एंटी फैन सेंटीमेंट।
2: अरे हार्ट सेंटीमेंट। आया अंग्रेजी बोलने वाला।
3: एंटी फोर।
2: एंटी फोर।
3: सेंटी फूस।
2: सेंटी फूस।
3: ओके।
2: अरे रे।
3: अरे।
1: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
4: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी कागजात पर साइन करवा लीजिए।
6: हाल जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेट लेटिव चो, तो जल्दी साइन कर दो।
4: थोड़ा देख ले।
6: और देख लो, देख लो, पर जल्दी। हाँ
5: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
4: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर?
6: अरे पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते और सिग्नेचर करके आए।
3: कौन लोग बटाटा था?
6: अरे यही लोग बटाटा था।
3: क्या बटाटा था?
6: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
3: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
6: तो साइन नहीं करने का?
3: आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ वेरी वेरी सॉरी। वेरी वेरी सॉरी।
6: तो बच्चे बताए तुम्हें खेल लेवा जाओ।
3: तुम्हें भी खेल लेवा जाओ।
6: होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू।
1: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगल-ए-आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
7: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो।
8: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें?
7: यकीनन।
8: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
7: ये अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
8: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
7: तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम सजी मुशान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
8: मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं।
7: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघला कर एक रकाशा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो।
8: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
7: खामोश।
8: अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
7: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी।
8: एक तंग दिल शहनशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहनशाह अकबर की मौत पहले होगी।
1: शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
9: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
10: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
9: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
10: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
9: विजय,

0: तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
1: मैं तो हमेशा बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
0: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
0: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
2: सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।

0: विविध भारती कार्यक्रम रिले कर रहे थे। अब समाचारों के लिए जुड़ेंगे रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन, मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और शिक्षा के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे कल रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉक्टर मुखर्जी की स्मृति में राज्य के सभी संभागीय और जिला मुख्यालयों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल

से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना जताई है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ की उपजाऊ धरती पर सिर्फ फसलें ही नहीं लहलहाती, बल्कि यहाँ की मिट्टी मेधा को भी बहुतायत से जन्म देती है। इसी धरती की गोद में पलकर नौनिहालों ने अपने ज्ञान का परचम फहराया है, अपने हौसलों को नई उड़ान दी है। छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार की बदौलत दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ रहकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के छात्रों की शिक्षा और करियर को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सिविल सेवा के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इसे युवा संभावनाओं और उपलब्धियों से जोड़ कर देखते हैं।
1: और ज्यादा हमारे बेटा बेटी वाला अवसर देना चाहते हैं, इसलिए जो 50 सीट के हम व्यवस्था 16 बढ़ा के अभी 200 करत हैं, 150 ज्यादा हमारे बेटा बेटी मन के अवसर मिली और पूरा खर्चा हम

0: इच्छा से कहीं भी रहती, लेकिन हम उनके सरकार और उनके खर्चाला वहन करें, तो ये सब सरकार के तरफ से प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ से अधिक बेटा बेटी मन यूपीएससी पास करें और भी क्षेत्र में मेडिकल में और भी उनमें उनके सिलेक्शन हुए और अपन माता पिता के नाम और छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करें।
1: राजीव युवा उत्थान योजना के तहत संचालित दिल्ली के छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में प्रदेश के आदिवासी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध है। ये हॉस्टल विशेष रूप से यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ के छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है। छात्रों को भोजन, पुस्तकों और नोट्स के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों के कारण हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीटों की कर दी गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल के सहायक आयुक्त श्री प्रतीक धुरंधर।
2: छत्तीसगढ़ इस असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम शिखर योजना अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी दिल्ली में निःशुल्क कराई जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर एवं जनजाति क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिल्ली में रहकर देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनमें प्रशिक्षण कराना एवं देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर चयनित करना। इसके लिए हम छात्रों को अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए, हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क प्रदाय करते हैं, जिसके साथ ही प्रतिमाह 12,000 रुपए की मासिक प्रतिपूर्ति भोजन परिवहन इत्यादि हेतु भी छात्रों को प्रदाय की जाती है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार 14 एम्पैनल कोचिंग संस्थान में से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो हमारे एम्पैनल कोचिंग संस्थान है वो सबसे प्रतिष्ठित जो यूपीएससी की कोचिंग संस्थान है वो है, जैसे वाजीराव, विजन, दृष्टि, ये सभी हमसे एम्पैनल हैं। साथ ही ट्राइबल यूथ हॉस्टल में छात्रों को लाइब्रेरी, मेस, जिम इत्यादि की भी सुविधा है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के छात्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में IRS, IRTS, असिस्टेंट कमांडेंट, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, DSP इत्यादि जैसे अब तक कुल 181 छात्र प्रशासनिक पदों पर चयनित हो चुके हैं। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके पश्चात रायपुर में ही इसकी परीक्षा दी जाती है। परीक्षा के जो मेरिट लिस्ट होती है उसके अनुसार छात्रों का चयन किया जाता है और वर्तमान में जो हमारी इस योजना की प्रावधानित सीटें हैं वो 200 हैं, जिसमें से 185 फाउंडेशनल कोर्स की सीटें हैं जो नए बच्चे होते हैं एवं 15 रिपीटर बैच की सीटें हैं। जो बच्चे पूर्व में यूपीएससी प्री या मेंस क्वालिफाई कर लिए होते हैं उन्हें हम रिपीटर बैच में भी जगह देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराया गया, उसमें ट्राइबल यूथ हॉस्टल से अध्ययनरत 13 छात्र प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और वह सभी अभी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जो 13 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने भी शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन किया। उन सभी को शुभकामनाएं दी कि आने वाले आगामी मुख्य परीक्षा जो कि अगस्त माह में कंडक्ट कराई जानी है उसमें वो अपना बेस्ट दें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। पूर्व में इसमें 50 सीटें प्रावधानित थी, 2024 से 50 सीट से बढ़ाकर इसे 200 सीट कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 200 सीटें हैं जिसमें 185 फ्रेशर के लिए हैं, 15 रिपीटर के लिए हैं एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एक और पहल की जा रही है कि कुछ छात्रों को हम छत्तीसगढ़ रायपुर में रहकर भी यूपीएससी की कोचिंग चयन का आधार एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के तर्ज पर ही, जो 200 नंबर की होती है, 100 सवाल आते हैं जिसमें, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी किया जाता है। नवंबर दिसंबर में उसका एग्जाम होता है जिसका मेरिट लिस्ट करीबन एक हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाता है। 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है छात्रों को कि वहाँ की वो यहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली में अपना एडमिशन कराकर किसी भी कोचिंग संस्था में अपना एडमिशन कर अपनी प्रशिक्षण जारी रखें। इसमें दो तरह से हम आर्थिक मदद करते हैं बच्चों को। एक तो हम उन्हें कोचिंग शुल्क प्रदाय करते हैं।

जैसे कि अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए और हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क बच्चों को प्रदाय की जाती है। उस कोचिंग शुल्क का प्रयोग वह हमसे एम्पैनल 14 कोचिंग संस्थान है उनमें से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और उस कोचिंग शुल्क को वो रिइंबर्स करवा सकते हैं। वैसे ही कोचिंग शुल्क के साथ साथ उन्हें मासिक प्रतिपूर्ति भी प्रदाय की जाती है जो कि प्रति माह 12,000 रुपए होती है जो कि यहाँ उनके रहने भोजन परिवहन इत्यादि हेतु सहायता उनके लिए की जाती है। ऐसी दूरदर्शी योजनाओं के कारण अब हमारे राज्य के ही वंचित वर्ग के बच्चे सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे नंबरों में प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। ऐसा विजन है हमारा कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वह यूपीएससी और बाकी देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर चयनित होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर रूप में हम छात्र की मदद कर रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ने प्रदेश के गांवों, शहरों और कस्बों में रहने वाले शिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। इसी तारतम्य में दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में कोचिंग प्राप्त कर यूपीएससी परीक्षाओं में हर साल छत्तीसगढ़ के युवा सफल हो रहे हैं। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता के लिए छात्र भी कमर कसकर तैयार रहते हैं। यहां कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र आभारी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के।
1: मेरा नाम हरिचंद्र प्रकाश सिंह है और मैं कोरबा जिला का निवासी हूं। मेरे पिताजी एसएससीएल में कार्यरत हैं और मैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयोजित राजीव उत्थान योजना के अंतर्गत मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं। इस वर्ष 2026 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्टेज में मैंने सफलता हासिल की है। अभी उसका मुख्य परीक्षा एवं पर्सनल इंटरव्यू राउंड बाकी है। मेरी सफलता पर छत्तीसगढ़ शासन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। जैसा कि मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं, हमें शासन द्वारा कोचिंग के हेतु 2,00,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाता है एवं जो हमारे मासिक खर्च वहन करने के लिए हमें 12,000 रुपए प्रति माह आवंटन किया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन का आभार मानता हूं जिन्होंने ऐसे एकीकृत अनुभव कराया और हमारे सफलता के साथी बने। कई बार जो समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकारी के साथ हमारे इंटरेक्शन सेशन भी कराए जाते थे जिससे हमें अपने प्रिपरेशन में होने वाली समस्याओं का निराकरण मिलता था एवं कई बार छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों द्वारा भी आगमन हुआ जिससे योजना को और कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए उस पर भी चर्चा हुई और इस योजना से हमें काफी लाभ प्राप्त हुआ और ये हमारी सफलताओं की सीढ़ियों चढ़ने पर हमारी पूर्ण रूप से सहायक है। प्रीलिम्स परीक्षा जैसे हमने ये स्टेज क्लियर किया है तब हमें यह सहयोग प्राप्त हुआ है कि जितने भी हमारे जो पूर्ण बैच से निकले हुए जितने भी अधिकारी जो अभी छत्तीसगढ़ कैडर में अभी शामिल हुए हैं अथवा जो हमारे सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है सोनमणि बोरा सर, उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें और किसी द्वारा सहायता किस और भी कैसे सहायता प्राप्त हो सके, जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे हमें कैसे मदद मिल सके, उनके जो नोट्स हैं उनका जो अनुभव है वो हमें कैसे प्राप्त हो सके, तो उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है और वो हमें एक मेंटर असाइन किए हुए हैं जो समय समय पर ऐसे वीकली हमारा अपडेट देते रहते हैं कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और अभी हम कितना परिपक्व हो चुके हैं। जैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल है वहाँ का जो माहौल है जैसे कि आप देखेंगे कि ओल्ड अजिंदा नगर है, करोलबाग है, वैसे ही उसी भी परिरूप में जो हमारा ट्राइबल यूथ हॉस्टल है वहाँ हम छात्राओं को जो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ के मेंटर्स हैं, उनको समय समय पर बुलाकर हमारा एक मेंटरशिप सेशन रखा जाता है। प्लस वो यूथ हॉस्टल के शुरुआत में जब हमारा वहाँ एडमिशन होता है तब वहाँ के जो टीचर्स आते हैं वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं, हमें क्या क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, इस विषय पर एक जानकारी देते हैं और एक विस्तृत रूप से हमें समझाइश देते हैं।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के युवा परिश्रमी और उत्साही हैं। यही वजह है कि कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में वे शामिल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। आज अनेक प्रशासनिक पदों पर यहाँ के युवा पदासीन हैं, लेकिन पहले एक दौर ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ के बहुत कम युवा इन प्रशासनिक परीक्षाओं को क्रैक कर पाते थे। राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था की और दिल्ली में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना की। यहाँ बहुत अच्छी अकादमिक पढ़ाई के कारण छत्तीसगढ़ के युवा अब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र सफल होकर देश प्रदेश और समाज की सेवा कर सकें। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा इस संबंध में बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं।
2: छत्तीसगढ़ शासन की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रयास है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता जो है वो है एक प्लेटफॉर्म या उनको गाइडेंस देने की, मेंटोरिंग करने की। हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विशेषकर जो यूपीएससी का जो तैयारी है ये काफी लंबा होता है, लगभग एक साल का तैयारी करने के बाद जो सफलता अर्जित करते हैं वो प्रशासनिक सेवा में विभिन्न पदों पे उनका नियुक्ति के पश्चात हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात ऐसी है कि बहुत ही कम हमारे जो युवा है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके इन प्रशासनिक सेवा में आ पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा ये एक प्रोग्राम लाई गई कि हमारे जो होनहार एसटीएससी ओबीसी के बच्चे हैं, इनको ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो नई दिल्ली में स्थापित की गई है वहाँ पे उनको पढ़ने का, रहने का, खाने का सब निशुल्क रूप से वहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। और इसके लिए जो प्रतिष्ठित जो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे उनको जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो छत्तीसगढ़ शासन वहन करेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों पूर्व में इस हॉस्टल में 65 सीट्स थे जिसको बढ़ा के 200 सीट कर दी गई है। और हॉस्टल के अलावा हमारे जो अलग अलग नई दिल्ली में जो कोचिंग का सेंटर के साथ जो तैयारी करते हैं, जो किराए में रहते हैं, उनका भी किराया जो है स्टाइपेंड हम लोग रीइंबर्समेंट करते हैं। और जो पढ़ाई का खर्चा है, जो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, हिंदी माध्यम में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए 1.5 लाख और जो अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के उनके लिए 2 लाख राशि का रिइंबर्समेंट जो है शासन द्वारा की जाती है। प्रतिवर्ष जो है बच्चों के एक यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, एक एग्जाम होता है, लिखित रूप से लिया जाता है और बड़ी संख्या में जो है हमारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो मेरिट सूची है उसके आधार पे उनको दिल्ली में दाखिला दी जाती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष से हम एक इसको नए कलेवर में पूरे स्कीम को ही हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं और ये बहुत शीघ्र ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। और छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय किया है कि केवल यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम्स के तैयारी के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका जो तैयारी करते हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहन जो है दी जाएगी। और साथ ही जो हमारे

बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, लॉ के लिए हो, ये तीन वर्टिकल्स में इसको इस स्कीम को तैयार की गई है और बहुत जल्दी ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ग्रेजुएशन हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया रखे हैं, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम है वो ग्रेजुएशन मिनिमम उसका आवश्यकता है, तो उसी के मद्देनजर जो है इस एग्जाम के लिए वही हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखे हैं। हम लोग एक्चुअली जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था हम लोग ने नहीं किया है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है ये एक बड़ा जटिल प्रक्रिया भी है, लंबी प्रक्रिया भी है, और आप जानते हैं कि हर कोचिंग सेंटर का अपना अपना एक वो रहता है कि किसी किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो बड़ा एक्सपर्टीज होती है, या किसी का जैसे जनरल नॉलेज में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ज्योग्राफी का ही ऑप्शनल है और उनको उसका तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी में जो सबसे बेस्ट जो कोचिंग सेंटर होंगे उस सेंटर में वो लेना चाहेंगे या लेना चाहेगी। ऐसे ही जिनको जिस प्रकार की जरूरत है अपने ऑप्शनल के हिसाब से या जीके की तैयारी के हिसाब से, तो वो अपना जो है जो कोचिंग सेंटर है वो खुद चुनते हैं, वहाँ दाखिला लेते हैं, और उसका जो खर्चा है मैंने जैसे बताया उसका रिम्बर्समेंट हम लोग करते हैं। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष एक रिकॉर्ड संख्यक हमारे 13 प्रतिभावान यूथ ने जो है उस हॉस्टल से जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास कर ली है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मुलाकात भी की है और हम सब उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये सभी बच्चे जो है फाइनली अंतिम पड़ाव तक जाए और उत्तीर्ण होकर जो है देश की सेवा करें, राज्य की सेवा करें। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है ये इसके लिए बकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाती है और हमारे वेबसाइट में भी इसका जानकारी दी जाती है, और इसके लिए संपर्क जो है जो भी संबंधित जिला है वहाँ के एससी ट्राइबल के माध्यम से जो है इसको किया जा सकता है, और इसके लिए एग्जाम जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं और उस एग्जाम के माध्यम से इसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी पूरा प्रोग्राम को ही हम रिव्यूम कर रहे हैं और आने वाला समय में ये फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे और अधिक जो है सीट्स भी इसमें होंगे, और हम लोग ने इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेंटर जो है हम लोग रायपुर में भी स्थापित करेंगे, ताकि दिल्ली जाने से पहले हमारे बच्चे को एक कंडीशनिंग जो है उनको एक एक्सपोजर की जो बात है वो प्रारंभिक तैयारी जो है हम रायपुर या जो एक और एक दो जगह में उनको तैयारी कर सके, उसके बाद उनको दिल्ली में बेस्ट ऑफ दी कोचिंग सेंटर में उसको ले जाने का एक उस प्रकार के रणनीति के साथ हम लोग पूरे स्कीम को जो है रिवैम्प इस साल से करने जा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक छत्तीसगढ़ ट्राइबल हॉस्टल की ख्याति पहुंच चुकी है। गांव के पढ़े लिखे युवा अब उचित मार्गदर्शन के अभाव में भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने अब है अपनी प्रतिभा को पंख लगाकर उड़ान भरने का बेहतरीन विकल्प। प्रदेश सरकार के सहयोग के कारण सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी अब बेहद आसान हो गई है। गांव की प्रतिभाएं अब दिल्ली का रुख जो करने लगी है।
1: मेरा नाम किशन लाल साहू है, मैं ग्राम पौनी मुंगेली जिला से आता हूं। मेरा इस साल 2026

0: के सिविल सेवा परीक्षा में मेरा इस बार चयन हुआ है। और मैं दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहता था, जिससे मुझे काफ़ी मदद हुई रहने में और यहाँ आके तैयारी करने में। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी अंतर था वहाँ, वो इन्वायरमेंट नहीं था यूपीएससी का, और यहाँ के काफ़ी जो पीयर ग्रुप जो यहाँ बने वो काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं साथ में हमने पढ़ाई की, इससे काफ़ी मदद हुई। और साथ में भी दोनों दो जन हम दो दोस्त इस बार मेंस दे रहे हैं इसके वजह से। तो ग्रुप स्टडीज काफी आवश्यक है अभी के, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम का काफी बढ़ चुका है, तो उसके लिए आपको काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए रहता है, खासकर जो मेंस स्टेज है उसके लिए। तो ग्रुप स्टडी काफी आपके माइंड को ब्रॉड करती है, तो उसके लिए जरूरी है काफी। और बाकी बच्चों को भी मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो इंक्रीज कर रही है नंबर, तो काफी बढ़िया है। और बाकी जो बच्चे जो नहीं आ पाते उन्हें भी और मौका मिलेगा।
1: छत्तीसगढ़ के छात्र दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल को अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। एक तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, और दूसरे छात्रों को आर्थिक मदद भी मिलती है। हॉस्टल का स्वस्थ वातावरण छात्रों को मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा में सफल छात्र यहां रहकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अपनी मंजिल को छूने के लिए बेताब छात्रों को राह दिखाने में दिल्ली का ट्राइबल यूथ हॉस्टल मील का पत्थर साबित हो रहा है।
2: मेरा नाम मयंक रात्रे है। मैं जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं फिलहाल अभी ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली का छात्र रहा हूँ, और मेरा अभी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की सीएससी परीक्षा के प्री में चयन हुए हैं, जिसके लिए मुझे आगे की तैयारी के लिए मेंस और इंटरव्यू उसके अगला चरण है। और मुझे ट्राइबल यूथ हॉस्टल से काफी मदद हुई है, जो उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दी है, मानसिक रूप से भी मुझे बहुत प्रेरित किया है वहाँ की जहाँ मैडम थी। और हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है, और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है, तो उसके लिए मैं काफी धन्यवाद करता हूँ सभी प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को। हमारा चयन एक बहुत ही कठिन कॉम्पिटिटिव परीक्षा के थ्रू हुआ था, जो रायपुर में आयोजित किया गया था। तो परीक्षा में मेरिट लाने के आधार पे हमारा चयन यहाँ ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में हुआ। यहाँ पे हमारे को पूरी मूलभूत सुविधाएं, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब चीज, रहने की व्यवस्था, और इवन सुरक्षा भी दी जाती थी कोचिंग में आने जाने के लिए। कोचिंग का जो 2 लाख रुपए की फीस हमको दी जाती थी, और प्रतिमाह 12,000 रुपए के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया गया सरकार के द्वारा। अभी जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, उनके उनसे जो सेक्रेटरी साहब हैं सोनमणि बोरा साहब, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हमें अभी जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए प्रति छात्र 35,000 रुपए की सहायता प्राप्त करने की घोषणा की है उन्होंने।

संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की इस साल की प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां रहकर तैयारी करने वाले 13 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें से ज्यादातर युवा जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का ये अवसर यहाँ के युवाओं के लिए एक अनुपम उपहार सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधनों के अभाव में कहीं पीछे न रह जाएं। इसीलिए सरकार

ने युवा शक्ति को छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सौगात देकर एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया है, जिसका भरपूर लाभ युवाओं को मिल रहा है। देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है, पर उसमें सफल होकर देश की सेवा करना और भी सम्मान की बात है। इसी गौरव

पर उसमें सफल होकर देश की सेवा करना और भी सम्मान की बात है। इसी गौरव और उपलब्धियों की पताका थामे छत्तीसगढ़ के युवा सुनहरे भविष्य का सपना संजोए अपनी मेहनत के बल पर लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर इसका अनुप्रसारण अभी रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने का। कार्यक्रम में पहला गीत सुनने से पहले एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग आज मंगलवार को हम करते हैं 10:30 से, यानी अभी। टेलीफोन में आई खराबी के कारण आज के लिए वैकल्पिक फोन नंबर की व्यवस्था की गई है। हमारे श्रोता इस फोन नंबर पे हमें फोन करके अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। आज के लिए हमारा फोन नंबर है 2545202 0. फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। सूचना एक बार और साथियों हम आपसे साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में फोन लाइन में आई खराबी के कारण आज के लिए वैकल्पिक फोन लाइन की व्यवस्था की गई है, और ये फोन नंबर है 2545202 0. फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। अभी ये फोन लाइन चालू है, इसमें आप फोन करके बातें करके अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने की ओर, सुनते हैं फिल्म एनिमल से लिया गया ये गीत।

एनिमल। इस फिल्म का गीत आपने सुना राघव चैतन्य और साथियों के स्वर में, मनोज मुंतशिर की रचना थी, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं, एक सूचना आपसे फिर साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन फोन लाइन में आई खराबी के कारण आज के लिए वैकल्पिक फोन नंबर की व्यवस्था की गई है। ये फोन नंबर है 254520, फोन नंबर है 254520। फोन लगाने से पहले 07752 अवश्य लगाएं। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में इस फोन नंबर पर आज रिकॉर्डिंग अभी चालू है। और अब आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने में और सुनते हैं रोचक कोहली, नवराज हंस और साथियों के स्वर में गुरप्रीत सैनी का लिखा ये गीत। संगीत रोचक कोहली का है और फिल्म है बाटला हाउस।

फिल्म बाटला हाउस का गीत आपने सुना, श्रोता हूं। हम आपको याद दिला दें, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद के लिए आपके बातों की रिकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं और आज के लिए वैकल्पिक फ़ोन नंबर की व्यवस्था की गई है। ये फ़ोन नंबर है 2545-2540। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और फिल्म भारत से लिया गया ये गीत सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने में।

श्रोताओं, आज मंगलवार है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का। और आज के लिए वैकल्पिक फ़ोन नंबर की व्यवस्था की गई है। आज के लिए फ़ोन नंबर है 2545 20, 2545 20। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग अभी चालू है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने में, और फिल्म गर्व 2 से लिया गया ये गीत सुनते हैं। आइए।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में रिकॉर्डिंग के लिए आज वैकल्पिक फ़ोन नंबर की व्यवस्था की गई है। आज के लिए फ़ोन नंबर है 2545 20, 254520। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। अभी आपके फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग चालू है और अब नए तराने में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह और साथियों के स्वर में मनोज मुंतशिर की रचना, जीत गांगुली का संगीत है, फिल्म है सनम रे।

0: इस गीत के साथ श्रोताओं हूँ कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यहीं विराम, और आइए अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: स्वीकार कीजिए सादर अभिवादन उमा शंकर पांडे का, और लीजिए सुनिए यातायात संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज प्रातः 7:15 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक जैन इंटरनेशनल स्कूल मुंगेली रोड सकरी से सकरी बटालियन तक क्रॉस कंट्री अर्थात दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 4 किलोमीटर की होने वाली इस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 475 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। चूंकि यह हमारे जिले के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, यद्यपि इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस पूरी व्यवस्था के साथ तैनात होगी, फिर भी आयोजकों से विशेष अनुरोध है कि यह ध्यान देवे कि प्रतियोगी विद्यार्थी पूरी सड़क में फैल कर न चलते हुए सड़क के किनारे चलें, कतार में चलें। आम यातायात प्रतियोगिता से किंचित मात्र भी प्रभावित न हो। इस बीच आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर उन्हें तत्काल साइड भी देवें। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र की सड़कों के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ईश्वर की भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से गर्मी के दिनों में शहर के चौक चौराहों में रेड सिग्नल में लोगों को हरे सिग्नल के इंतजार में खड़े न होना पड़े, इस मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर हमारे बिलासपुर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सिग्नल को बंद करवा दिया था। गर्मी की विदाई एवं वर्षा ऋतु के आगमन होते ही तापक्रम सामान्य होने पर शहर के सभी चौक में लगे सिग्नल को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ध्यान रहे, लगभग 3-4 माह से सभी चौक में बिना रुके जाने की आदत बन गई है। सभी से अनुरोध है अपनी इस आदत को बदल डालें, क्योंकि सिग्नल जब करते ही ₹2000 का चालान तत्काल आपके पास आ जाएगा, अतः चेतन रहें। दोस्तों, मानसून का शुभागमन हमारे जिले में हो चुका है। वर्षा भी लगातार हो रही है, वर्षा के साथ साथ बिजली भी चमक रही है। यदि आप कहीं आ जा रहे हैं इस बीच वर्षा होने लगे तो वर्षा से बचने किसी भी वृक्ष के नीचे खड़े न होएं। आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका रहती है, कई बार ऐसी दुर्घटना भी हो चुकी है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, यातायात नियमों का पालन करें।
0: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर का पुनः प्रसारण। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की अगली कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
3: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
3: जी
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
3: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
3: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
3: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों

0: के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी, हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी,
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर

0: इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी।
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती।
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।

0: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
0: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
0: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
0: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
0: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
3: आओ, चलो आओ।

0: कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: नादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा

0: लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
1: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
0: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
1: जलेबी? वैसी जैसे हमारे देश में मिलती है?
0: हाँ बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
0: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।
0: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
1: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
0: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
2: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
1: इतने जल्दी?
2: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
1: हाँ, जाना है।
0: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
2: हाँ।

0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड है, वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
1: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ इस
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ कादिर, आओ आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा। अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 हुए हैं। 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

आपके सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए कुछ ही पलों में जुड़ेंगे रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इन सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT NR में संचालित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल 8 जुलाई को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में आज संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में नलकूप खनन यानी ट्यूबवेल खनन पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

0: है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे, FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
3: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपने ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4

0: प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से, तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

कैसी।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं और

0: तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियां भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बेहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल विश्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में एहसान रिजवी के बोल हैं।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अनोखा प्यार इस फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जिया सरहदी के बोल, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसकी, उसमें आपको क्या विशेषता नजर आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत, और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ रही है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़, कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ रही है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ रही है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए, धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना, उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई, या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई, या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत खास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं, पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं, वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो, या जो आपको बहुत पसंद आया हो, या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मजा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुगल ए आजम। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनकी एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है, कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या, राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देखकर ये महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

सूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज, संवाद आज भी याद किए जाते हैं। जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है। आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं, उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का यह किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो उसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर के साथ जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है, और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथ ही लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आंख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर, महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाएं, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है।

आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए, केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है।

हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता-पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास

0: कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के

0: राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके

0: अर्थात बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है SD बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार श्री रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि

0: इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखी सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
1: लाइक, कमेंट, आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
2: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो उस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं हम भी। जी लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं।
2: जी
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां

0: विन है जो विषय संबंधित है वो हम उन तक पहुंचाते
1: पहुंचाते
0: हैं।
1: हैं
0: तो
1: जी।
0: अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर सौ सौ दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं ना,
1: जी बिल्कुल,
0: याद है
1: जैसे
0: आपको?
1: कि याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर।
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे,
0: कहा
1: और
0: जाता
1: वो
0: है
1: जी
0: कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन नौ मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास नौ मन सोना तो होगा ही।
1: हो कहीं नहीं।
0: ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ
1: इसी
0: को
1: तरह से
0: मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वह सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो,
1: जी
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
0: तो
1: थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज
1: चलिए
0: परीक्षा
1: आज
0: होती
1: जानते हैं। बिल्कुल
0: है।
1: ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: बैठ
1: जाता है
0: जाता
1: और
0: है।
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं
1: चलिए
0: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट, लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और
0: अब,
1: जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के CSR कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धि
1: और
0: है, जी।
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है।
0: और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की

0: किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे, और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते
0: चलिए
1: हैं, फिर उसके बाद चर्चा
0: जी।
1: करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो न देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित
0: पहुंचा
1: वो
0: देंगे।
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। फिर
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय
0: कितनी
1: में, जी कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हम हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोस या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं।

0: का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोस या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
0: जी
1: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
0: जी
1: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
0: जी
1: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
0: बिल्कुल
1: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई
0: मुसीबत
1: है।
0: में डाल देते हैं, और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे
1: कुछ
0: हैं।
1: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं
0: हाँ, ये बात भी
1: कि
0: होती है।
1: फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
0: जी
1: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
0: जी
1: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
0: जी
1: जान
0: जान
1: लेते हैं
0: लेते हैं।
1: कि हाँ, ये
0: जी
1: किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है, उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका ये कहना है।
1: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें,
0: जी
1: नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं।
0: जी
1: अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं,
0: जी
1: और कुछ लोग
0: और
1: अपना
0: कई
1: डांस
0: तो
1: का
0: लोकप्रिय भी हो रहे हैं जैसे
1: डांस
0: आप
1: का
0: बता,
1: वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है,
0: जी
1: और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
0: बहुत सारे विषयों
1: मतलब
0: पर वो
1: मुझे तो
0: लोग
1: लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
0: सोशल
1: पर।
0: मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का
1: और
0: इस्तेमाल
1: इसमें
0: करना।
1: नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई

0: बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया
0: कम किया
1: जाता
0: जाता है
1: जी
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है,
1: जी
0: लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां
1: जी
0: पर
1: जी
0: ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते
1: वो
0: हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।

0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती हैं कि हम तो ठग गए,
1: हाँ
0: जबकि
1: जी
0: ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है। ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई
1: जी
0: बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी
1: हाँ
0: वालों
1: जी
0: से
1: हाँ
0: अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी
1: ये बात
0: वाले
1: होती
0: भी
1: जी
0: आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है ये
0: बिल्कुल
1: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात
1: बता
0: लिखी
1: दिया
0: है,
1: जी
0: और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें ऐसा
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: भाव पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता
1: और
0: ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले, तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें, कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ
0: अच्छा
1: ये
0: करी
1: बात तो है,
0: पत्ता
1: करी
0: भी
1: पत्ता भी
0: डाल दो।
1: डाल दो।
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
1: बिल्कुल
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: और
0: जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
1: बिल्कुल आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे
1: श्रोताओं ने
0: की
1: लिख भेजा है
0: एक
1: कि
0: टांग, ये भी एक
1: हाँ
0: मुहावरा है।
1: ये भी एक
0: अब
1: पॉइंट।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल ये भी होती है जहां अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है

0: तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
1: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूं, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है, तो अर्थ बदल जाता
0: अर्थ
1: है।
0: अर्थ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मोल भाव के लिए इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह तरह के डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
0: कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
1: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारे कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए

0: स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
0: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई? आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो
0: जी
1: मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
0: अच्छा,
1: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
0: अच्छा
1: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है,
0: जी
1: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं। और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
0: जी जी
1: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए हैं, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
0: अच्छा
1: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा।
0: जी
1: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
0: अच्छा
1: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस
0: जी
1: तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं,
0: जी
1: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के
0: बाकी शहरों
1: मुकाबले
0: में। जी
1: इस क्षेत्र के लिए
0: जी जी
1: स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है।
0: बिल्कुल
1: मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है।
0: हाँ
1: लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
0: जी
1: ताकि, बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
0: हाँ
1: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं
0: हाँ
1: आदमी फंस
0: हाँ
1: जाता है, तो उसमें
0: अच्छा
1: फंस सा गया था। बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया,
0: जी
1: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
0: अच्छा
1: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
0: जी
1: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के
0: हाँ
1: बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
0: अच्छा
1: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है। तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
0: अच्छा
1: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
0: मतलब
1: ऑडिशन
0: पहली
1: दिया,
0: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
1: नौकरी के लिए।
0: अच्छा
1: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
0: जी।
1: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
0: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
1: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
0: जी
1: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
0: हाँ
1: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
0: हाँ
1: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
0: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
1: जी
0: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
0: क्या
1: हूं।
0: बात है, क्या बात
1: तो आई नेवर इमेजिनड एनी अदर प्रोफेशन।
0: वाह वाह वाह।
1: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो
0: हाँ
1: नाटक हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था।
0: हाँ
1: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
0: हाँ
1: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
0: जी
1: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है

0: कॉन्फिडेंस, और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं. अच्छा, तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई.
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये कितने
0: मैं
1: तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए, जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो. तो
1: अच्छा
0: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं. तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता. और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम, आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया, क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया. तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
1: जी
0: कि
1: जी
0: यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन करना पड़ रहा है.
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया.
1: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी के वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइट ली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है. तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना,
0: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है.
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे
0: जी
1: अच्छे से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते बट मैंने मूंछ बढ़ाई, और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी।
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया, जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया, जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला, और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
0: अच्छा
1: दैट इज थिंग।
0: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमोसफेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो
1: गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
1: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: जी
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे, मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी।
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा,
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी,
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे
0: हाँ
1: बताया कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा,
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा,
1: मुकेश छावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी,
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
0: हाँ,
1: होंगे।
0: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूं सर, तो मुझे बिल्कुल

0: सर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: हूं। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
1: जी
0: तो सामने, मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूं, पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
1: ओह
0: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी।
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ हाँ
0: हमारा शो और उनका शो, केबीसी और वो, हम
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का।
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था, वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है। जैसे,
1: अच्छा
0: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, ले एक मिनट बात करनी है।
1: हाँ
0: तो वो आए, पटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू
1: ओह
0: लाफ,
1: अच्छा।
0: मैं बोला मुझसे होता नहीं
1: हाँ।
0: है।
1: तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूं बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
1: क्या
0: हमेशा
1: बात, चलिए सुनते हैं।
0: हम

0: दिल ना प्यासा तरसे दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार।

0: और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई, एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो, मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर

0: एक्टर्स भी
1: जी
0: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एक ही वर्ष से एक ही मेरी दूसरी फिल्म थी,
1: जी
0: फिर मैंने बागी 3 भी की जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख
1: हाँ
0: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
1: जी
0: तो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
1: हाँ
0: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
1: वेब
0: सीरीज
1: सीरीज
0: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
1: जी
0: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर
1: हाँ
0: किया।
1: हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा
0: रणजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
1: अच्छा
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओ
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने।
1: हो
0: मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। उन्होंने
1: अच्छा
0: कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट, टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: या
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम
1: बराबर
0: करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही है।
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
1: जी
0: बिकॉज
1: जी
0: महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया,
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर।

0: आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा।
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था, बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे।
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ।
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ।
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले, तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी,
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था जहां जहां बुलाया जा रहा है, वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ,
0: वो सफर है।
1: अच्छा।
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ।
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ।
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
1: है, क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता
0: जी,
1: था क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उनका,
1: वागले मेरा,
0: मनोज।
1: मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था,
0: हाँ
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए
0: हाँ
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी से
0: जी,
1: सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहां से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और उन्होंने
0: हाँ।
1: उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने?
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा,
1: और ये जो करेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड करेक्टर है
0: ओके।
1: मेरा, जो करेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ,
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही है, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है। और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है तो हो
0: बहुत बड़े
1: जाएंगे।
0: कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं, कुछ नहीं है।
0: जी,
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी,
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी,
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर के थ्रू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही लेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी,
1: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
0: अच्छा,
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर

0: किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है या मराठी में आवंडा गेड़ा सुनते अपन,
1: एक घूंट लेने की जो
0: घूंट
1: एक प्रक्रिया
0: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली, बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
1: हाँ
0: तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा,
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
1: अच्छा,
0: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है।
1: जी जी।
0: मैंने बोला, सर काम अच्छा करता है क्या? अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा
0: अच्छा। चलो, नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है, उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी,
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ।
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ।
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला है नागपुर का इसलिए।
1: हाँ।
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, रामजी लंदन वाले।
1: अच्छा। हाँ।
0: ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा।
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं। उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है।
1: हाँ।
0: पर वो

0: बोलते कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा
1: हाँ
0: रहा है, गाड़ी रहेगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं,
1: हाँ
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मजा तो वही है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
1: क्या बात है।
0: इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था है अपना दिल तो आवारा।
1: हो, आइए सुनते हैं।

जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल।
2: अभी आप विद्यार्थी प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़ केसर छतौली इंजानी बरपटिया पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर नवाडी पोड़िपा पेंडारी सिंघरा भरदा गौरा मदननगर गणेशपुर चिटका बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा कुंदीकला जामदोहर सिधवा गोपालपुर मुरका अतौरी ठरकी पेंडारी कोटराही भगवानपुर नवापारा जिनिया कनकपुर डकिया शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली अमड़ी किशुनपुर मसगाड सत्तीमुड़ा लक्ष्मणगढ़ सस्कालो तेंदुटिकरा मानपुर घटगांव दातीढाब बाबा पहाड़ बरडाण कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला पत्थलगांव कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी गट्टीबुड़ा करडेगा खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर साजापानी तीता पाकेर सोनाजोरी घंताडांड परसाडांड पेटा बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल

0: धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये तौलीपाली, धोबनीमार, बैगामार, पीड़िया, बोतली, सेंद्री, पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वनमंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, होलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गाँव के आस पास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। पेश है स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम अमृत धारा। इसमें आज नाक कान गले की सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर राजेंद्र जोशी से ली गई भेंट वार्ता सुनिए। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन।

0: अमृतधारा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा धन और कोई दूसरा नहीं है। तो इस शरीर के साथ कुछ ऐसे अंग हैं जैसे आंख, कान, नाक, गला, ये हमें अलग अलग ढंग से इस प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम प्रदान करती हैं। और ये अंग ऐसे हैं, नाक, कान, गला की यदि हम बात करते हैं तो हर मौसम में इससे जुड़ी कोई ना कोई समस्या हमें होती रहती है, लेकिन जागरूकता के साथ हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, कहाँ पर ये खतरनाक है और कहाँ पर हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो ये सब बातें हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे बीच नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र जोशी, इस अंचल के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक हमारे बीच हैं आकाशवाणी बिलासपुर में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो आकाशवाणी का पुराना श्रोता हूँ, बचपन से लेकर अभी तक सुनता है, यहाँ के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आज का जो सेशन है, अमृत धारा का जो कार्यक्रम है, हमने कोई एक विशेष विषय नहीं लिया है, हमने

0: सामान्य समस्याओं पर केंद्रित करके आज के कार्यक्रम को लिया है। तो मैं अलग अलग उम्र के हिसाब से कुछ कुछ बातें पहले करना चाहूंगी। कान के संदर्भ में ही बच्चों की जो प्रारंभिक समस्याएं हैं, जो हियरिंग लॉस होती है, उसको हम कैसे समझें बच्चों में?
1: देखिए, विकसित देशों में आजकल हर बच्चा जिसका जन्म होता है उसका सुनाई देने की क्षमता टेस्ट की जाती है। अभी भारत में चूंकि हम अभी उतने विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ये सामान्यतः हर बच्चे का टेस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमको सजग रहना ही पड़ेगा। काफी बच्चों में जन्म से सुनने की क्षमता नहीं होती है, जो बहुत देर बाद पता चलती है या उसको दुर्लक्ष कर दिया जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बच्चा बड़ा होगा अपने आप सुनने लगेगा, धीमे धीमे बोलने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं। अगर उसका हियरिंग लॉस है तो वो जन्म भर वैसे ही रहना है। उसको जितना जल्दी पहचाना जाए और उसका इलाज किया जाए तभी वो बच्चा सामान्य रूप से मानसिक रूप से विकसित हो पाएगा, क्योंकि उससे उसकी शैक्षणिक ये भी प्रभावित होते हैं और वो नॉर्मल स्कूल्स में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी पता लगाना जरूरी है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है। पर उससे पहले बच्चे को हियरिंग लॉस नहीं हो उसके लिए गर्भावस्था में माँ क्या कर सकती है?
0: जी जी,
1: कई बार जेनेटिक लॉसेस होते हैं कि परिवार में कुछ और बच्चों को भी हियरिंग लॉसेस हुए, तो आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। आजकल कुछ एमनियोसेंटेसिस से पता भी किया जा सकता है कि बच्चों को हियरिंग लॉसेस है या नहीं है या कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, पर कई बार पता नहीं चल पाता है। लेकिन माँ को हमेशा कुछ भी दवाई लेने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। जब भी किसी डॉक्टर पे इलाज के लिए जा रहे हैं तो बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्भावस्था में कुछ दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए, तो वो आपके डॉक्टर उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन आप बताएंगे नहीं तो कई बार अर्ली प्रेगनेंसी पता नहीं चलता है और जो दवाइयाँ वर्जित है वो भी दी जा सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्टर को सदैव बताएं और दवाइयों का सेवन बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कुछ दवाइयों की वजह से भी बच्चे में हियरिंग लॉसेस हो सकते हैं। और मुख्यतः पहले 3 महीने में, गर्भधारण के पहले 3 महीने में बहुत जरूरी है कि किसी भी दवाई का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें।
0: बिल्कुल।
1: अब जन्म हो गया, उसके बाद बच्चा आपको नॉर्मल दिख रहा है लेकिन हियरिंग लॉस है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा है। अभी अपने यहाँ पे हर बच्चे का टेस्टिंग संभव नहीं है, पर कुछ बच्चों की तो जांच जरूरी है
0: जी।
1: जैसे बहुत छोटे जो पैदा हुए, कम वजन के पैदा हुए, या समय से बहुत पहले पैदा हुए, या फिर बहुत लंबे टाइम तक उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा या ऑक्सीजन सपोर्ट लगा, या फिर जिनको पीलिया बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से वजन उनका, उनको ब्लड चेंज करना पड़ा, या ऐसा कोई भी कारण जो बच्चा बहुत लंबे टाइम तक मेनिंजाइटिस रहा या कोई गंभीर बीमारी रहा, उस बच्चे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट बड़ा आसान सा होता है, OAE बोलते हैं, उससे पता चल सकता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता नॉर्मल है या इसको और अधिक जांच की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: OAE बहुत आसान उपलब्ध ये है, लेकिन ये करने से अपन सजग हो जाते हैं कि भाई ये बच्चे को शायद सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको और जांच की जरूरत है। आप 3 महीने वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बेरा करके टेस्ट होता है जिसके जरिए अपन पता कर सकते हैं कि ये बच्चे की सुनने की क्षमता कम है क्या। अगर बेरा में लगता है कि कम है तो फिर से रिपीट किया जा सकता है बेरा, तो कंफर्म कि हाँ ये बच्चा सुनने श्रवण बाधित है
0: जी।
1: लेकिन ये टेस्टिंग के बिना, देखिए बड़े पेशेंट में तो अपन टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन छोटा बच्चा बता नहीं सकता है, तो उसके कान में ध्वनि देखे और उसके कान की नस में तरंग पैदा हो रही कि नहीं ये देखे जा सकता है, और उसको उससे काफी एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है कि नहीं,
0: और उसका इलाज भी संभव है।
1: जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि माँ के मन में ये शंका नहीं है कि क्या मेरा बच्चा सुन रहा है कि नहीं, लेकिन पारिवारिक दबाव से सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसका चाचा भी लेट बोला था, ये भी बोलेगा बड़े होने पे सुनने लगेगा, पर ऐसी कोई माँ नहीं है जो आइडेंटिफाई, जिसको शंका नहीं हो कि मेरा बच्चा ठीक सुन रहा है कि नहीं। अगर ऐसा माँ को लगता है तो तत्काल जांच करवाइए, और माँ जनरली 5 से 6 महीने में उसको शंका होने लगती है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखता, मैं आवाज देती हूँ पलट नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जरूर हो सकता है जांच करवाइए
0: जी।
1: उस टाइम में सामाजिक दबाव में ज्यादातर महिलाएं फिर आगे जांच से हिचक जाती है कि नहीं सब लोग बोल रहे तो हो सकता है बड़े होके ठीक हो जाए, पर अगर उसकी सुनने की क्षमता जन्म से नहीं है तो वो दोबारा विकसित होने का कोई चांस नहीं है, उसको इलाज लगेगा ही लगेगा
0: जी जी।

0: से ये संभव नहीं होगा कि वो फिर से सुनने लगे अधिकांश केसेस में, लेकिन उसको एकदम जल्दी से जल्दी हियरिंग एड्स देके और उसको ट्रेन करना शुरू किया जा सकता है, जिससे कि वो बच्चे का बौद्धिक विकास ठीक होने लगे।
1: सही बात।
0: साइंस हमें बताता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास पहले 2 साल में सबसे अधिकतम होता है।
1: जी।
0: अगर उस टाइम में बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसका उस समय का जो बौद्धिक विकास है, जो सुनने की क्षमता है, उसके जो मस्तिष्क में शब्दकोश बन रहा है, वो कुछ भी नहीं बन पाएगा।
1: जी जी।
0: और उसके बाद हम जो भी करेंगे वो अपूर्ण रहेगा, अप्रत्याप्त रहेगा, जो समय पर नहीं हो पाए।
1: सही बात है।
0: अभी एक इलाज जो बहुत महंगा है लेकिन जो मिराकल है, वो कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं। ऑपरेशन करके एक मशीन को इंसर्ट किया जा सकता है कान में और उससे बच्चे का एकदम सामान्य विकास हो सकता है। कई राज्य सरकारें आजकल बाल श्रवण योजना में इसको मुफ्त में भी करवा रही हैं, तो इसको आप कंसल्ट करके और करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी जितना जल्दी हो सके, 6 महीने 1 साल, जितना जल्दी हो सके उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5 साल में करने पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए जरूरी है कि ये जल्दी जल्दी किया जाए।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब, आपने एक बार में ही बहुत सारी बातें बता दी कि जन्म के बाद ही जल्दी से जल्दी ये पता करना जरूरी है कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, और यदि नहीं सुन पा रहा है तो उसका इलाज करके उसको तुरंत ठीक करना, ताकि उसका बौद्धिक विकास सामान्य हो। जैसे आपने कहा कि जो नहीं सुन पाते हैं उसका बोलना भी मुश्किल रहता है, तो क्या बच्चे का समय पे बोल ना पाना सिर्फ हियरिंग लॉस के कारण है या उसके और भी कारण होते हैं?
0: आजकल हम एक बच्चा नॉर्मल सुन रहा है, उसका बाकी बौद्धिक विकास नॉर्मल है, लेकिन बोल नहीं रहा है। ये डिलेड स्पीच आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं। एक सिंपल चीज समझना जरूरी है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए या ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके अगर ब्रेन को कंप्यूटर डिवाइस माने तो एक इनपुट डिवाइस आंख है, जिसके जरिए कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, कुछ कान के जरिए जा रही है, और ये दोनों के प्रोसेसिंग होके ब्रेन का विकास हो रहा है। जब बोल नहीं रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि उसके मस्तिष्क में उतने शब्द ही नहीं पहुंचे।
1: सही बात।
0: उसका एक कारण आज के युग में जो हम बहुत कॉमन देख रहे हैं और जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगा, वो मोबाइल डिवाइस।
1: जी।
0: आजकल बहुत चीजों में हम आउटसोर्सिंग सुनते हैं कि कंपनीज अपने काम आउटसोर्सिंग कर देते हैं। आजकल बच्चे को बड़ा करने काम हमने मोबाइल को दे दिया है, ये आउटसोर्सिंग, उसकी वजह से बच्चा मोबाइल इतना आकर्षित करने वाला डिवाइस है कि वो बच्चा पूरे टाइम उससे जुड़ा रहेगा। पर वो मोबाइल सिर्फ आंख के माध्यम से एक बहुत चित्र सुंदर उसको दिख रहा है और वो उसको बांध के रख देता है, लेकिन उसके शब्दकोश में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो उसके ब्रेन में कोई भी नया शब्द नहीं जा रहा है और वो बोलना शुरू नहीं कर रहा है। 1 साल में जनरली बच्चे बैबलिंग करने लगते हैं, मामा पापा बाबा मामा, एक एक ये 1 साल में, उसके बाद वो 2 शब्दों को जोड़ के एक सामान्य सा वाक्य बनाने लगते हैं। 2-2.5 साल तक एक कंपाउंड सेंटेंस की 2 भावों को जोड़ के और वो वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। पर अगर उन बच्चों के मस्तिष्क में शब्दकोश ही विकसित नहीं हुआ है तो उनकी भाषा भी अविकसित रहेगी।
1: सच बात है।
0: एक जो जानना जरूरी है कि अभी की तारीख में जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो अचीवर्स हैं वो आइडियाज के बल पे है। अगर आइडिया कोई भवन है तो उसकी ईट शब्द है। आपके पास शब्द विकसित है, शब्दकोश बढ़ा है, तो आपके आइडियाज भी उतने अच्छे हो सकते हैं। पर आपके पास शब्दकोश सीमित है तो शायद आपके आइडियाज भी उतने अच्छे नहीं होंगे। और अभी मॉडर्न वर्ल्ड में
1: भाषा ही तो सारे ज्ञान का माध्यम है,
0: तो इसलिए भाषा के विकास के लिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात, जो पुराने टाइम में हम लोग परिवारों में देखते थे, दादा दादी कहानियां सुनाते थे, माँ बच्चों से खेलती थी, बात करती थी, आजकल हर व्यक्ति मोबाइल में बिजी है या फिर परिवार बहुत छोटे हैं, इसलिए बच्चों से बात करने के लिए कोई नहीं है।
1: सच।
0: बच्चों को भारत में संस्कार और रोचक कहानियां कहानियों के जरिए मिली हैं और उससे संस्कार भी मिले हैं। अब कोई बच्चों को कहानी नहीं सुनाता है, उनकी भाषा नहीं हो रही, या तो वो मोबाइल पे देखते हैं या टीवी पे कार्टून देखते हैं। पर उनकी भाषा समृद्ध होने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे से लगातार बात करें।
1: सही।
0: पिक्चर वाली कहानी लेके उसको चित्र के साथ, उसके साथ खेलिए, कुछ क्रेयॉन से उसके कलर भरिए, पर इंटरैक्ट विथ योर चाइल्ड। आप बच्चे से खेलेंगे नहीं, उसका विकास नहीं हो पाएगा। मोबाइल आपके बच्चे का विकास नहीं कर सकता, विकास अवरुद्ध करता है। मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब। और समय पर बच्चे का बोलना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण और हम जो बच्चों को दे रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जो बच्चों को एक और समस्या रहती है कि वो नाक में कभी पेंसिल घुसा देते हैं, कभी कोई कॉइन घुस जाती है, यही मुंह से भी होता है, कुछ ना कुछ कान में नाक में मुंह में घुसाने वाली जो बात है, तो इसके संदर्भ में जो पदार्थ फंस जाते हैं, जो चीजें फंस जाती हैं, उसमें कब चिंता की बात हो जाती है या सामान्य जो हमें उपचार है हम तुरंत क्या करें उसमें?
0: तुरंत कुछ नहीं, आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा जिसको निकालना पड़ेगा, पर प्रिवेंशन इज पॉसिबल। कई बार बच्चे बहुत स्पेशली जब एक साल का बच्चा रहता है, जब वो चलना शुरू करता है तब वो पूरी दुनिया अपनी एक्सप्लोर करना चाहता है, आसपास की चीज़ों को महसूस करना चाहता है, वो हर चीज़ को छू के देखेगा, नाक में डाल के देखेगा, मुंह में डाल के देखेगा, और इसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर कुछ भी फंसा है तो उसको निकलवाने आपको डॉक्टर पे ENT पे जाना ही पड़ेगा। सामान्यतः हम आसानी से निकाल लेते हैं, कभी कभी बेहोश करके, पर एयरवे फॉरेन बॉडीज बहुत जानलेवा हो सकती है। अगर वो चीज़ लंग में चली गई तो बहुत जानलेवा, और ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि ये इस वजह से होता है। कई बार एक्सीडेंटली जब माँ बाप को पता नहीं रहता है, पर कई बार मैं देखता हूँ कि एक साल के बच्चे को माँ बाप काजू खिलाने जाते हैं या मूंगफली खिलाने जाते हैं, आपके बच्चे के दांत नहीं आए अभी, वो चबा नहीं सकता है, उसको ये चीज़ें खिलाना वर्जित है
1: जी।
0: अभी सिर्फ सॉफ्ट डाइट दीजिए, ये चीज़ें पौष्टिक हो सकती है लेकिन आपका बच्चा उसको नहीं खा सकता है। अगर खिलाने की बहुत इच्छा है उसको पीस के चूरा करके दीजिए, पर वैसे नहीं खा सकता है, वो मत दीजिए, वो गले में फंस जाते हैं और उसमें बहुत जानलेवा परिस्थिति भी हो सकती है। एक चीज को मैं जरूर बताना चाहूंगा जो कम लेकिन बहुत जानलेवा हो रही है, वो ये बैटरी सेल्स जो ये है
1: जी जी।
0: ये लोग बाग निकाल के अपने डिवाइस से कहीं पे भी डाल देते हैं, उसको जो बैटरीज है उसमें केमिकल फिर भी एक्टिव रहता है, और वो अगर बच्चे के गले में चला गया तो वहाँ पे सीवियर बर्न हो जाता है, वो बच्चे को जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी आप अपने डिवाइस से कोई भी, चाहे खिलौना हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे उस बैटरी का सेफ डिस्पोजेबल आपकी जिम्मेदारी है, इसका विशेष रूप से सब लोग ध्यान रखें।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब। और लापरवाहियां बड़ों से हो रही हैं, उसका खामियाजा कई बार छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और नाक से संबंधित भी बच्चों की कुछ समस्या रहती है, आपस में टकरा गए खून निकलता है, कभी गर्मी बढ़ती है तो खून निकल जाता है, तो बड़ा डर पैदा हो जाता है मन में कि खून निकल रहा है, इसको कैसे रोकें, क्या करें?
0: ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली ये छत्तीसगढ़ी में तो इसको नक्सीर बोलते हैं, और बहुत सामान्य बचपन का प्रॉब्लम है। जनरली बच्चे बड़े होते हैं तो ये कम हो जाता है, किसी बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होता है, भर्ती की जरूरत नहीं होता है, घबराए नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग है, स्वतः से बंद हो जाएगा। कोई ज़्यादा अगर आपको लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, पर हड़बड़ाए नहीं। ये जो बच्चों में खून निकलता है मुश्किल से दो चार बूंद रहता है, जो स्टेन बहुत बड़ा रहता है इसकी वजह से ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकला है, घबराए नहीं, बड़े होते तक सब सामान्य हो जाता है, कुछ लोकल ड्रॉप्स वगैरह से ठीक हो जाएगा
1: जी जी।
0: कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं।
1: डॉक्टर साहब, नाक में ड्रॉप डालने की बात आपने कही है, तो जैसे सर्दी जुकाम होता है उस समय भी लोग नाक में मनमाने ढंग से ड्रॉप ओवर द काउंटर खरीदते हैं और डालने लगते हैं, तो क्या ये सही है?
0: जी, पिछले 5-7 साल में गवर्नमेंट ने कुछ नेजल ड्रॉप्स नाक खोलने के लिए उसको ओवर द काउंटर सेल के लिए अलाउ कर दिया है कि केमिस्ट से आप जाके खरीद सकते हैं, पर ये ड्रॉप सिर्फ 5 दिन के लिए सुरक्षित है, उसके बाद आपकी नाक इस पर निर्भर हो सकती है और ये ड्रॉप्स भी नाक की बीमारी कारण बन सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग 5 दिन से अधिक ना करें, ये खुद बीमारी का कारण बन सकता है।
1: दूसरी एक और प्रॉब्लम जो बड़ों में भी बच्चों में भी होती है, टॉन्सिल्स की। ठंड लगी या ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो लोगों को लगता है ये सब खाने से या ठंडे से हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और फिर गले में दर्द, थूक गुटकने में तकलीफ, खाना निगलने में तकलीफ, तो ये बार बार क्यों होता है और इसको कैसे, इससे बचा जा सकता है?
0: टॉन्सिलर इन्फेक्शन बचपन में हो सकता है, कई बार एक्यूट टॉन्सिलाइटिस नहीं होकर सिर्फ सर्दी जुकाम रहता है और उसके साथ गले में दर्द रहता है जो सामान्य है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है जिसमें कि तेज बुखार भी आ सकता है, उसको इलाज लगेगा ही। और एक एपिसोड टॉन्सिलाइटिस का होने से एकदम ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, पर बार बार होने से ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है, आप किसी विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपको उचित सलाह दे पाएंगे। एक ग्रंथि एडिनोइड करके होती है जो सामान्यतः दिखती नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चा हमेशा मुंह से सांस लेता है रात को सोते वक्त, और वो उसकी वजह से बच्चे को सोते में वो खर्राटे लेगा और मुंह खोल के सांस लेगा, वो सामने

0: दिखती नहीं है, पर उसको भी सर्जरी का जरूरत हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस से ज़्यादा एडिनोइड्स ज़्यादा कॉमन है, पर उसको भी अगर है तो ऑपरेशन कर लेना उचित है। और वो कई बार जल्दी उम्र में भी ये लक्षण आ सकते हैं, 3-1 साल में भी आ सकते हैं, पर उसको ऑपरेशन सरलता से किया जा सकता है, सेफ ऑपरेशन।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब कान की हम बात करते हैं तो बच्चों के हियरिंग प्रॉब्लम से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कान में पस बनना और कान का बहना, ये भी एक बड़ी सामान्य सी समस्या है जो अक्सर किशोर वय के बच्चों तक को होती रहती है।
0: ये किसी भी उम्र में हो सकता है, पर बचपन से कई लोगों का रहता है। देखिए, कान बह रहा है तो एक सामान्य कारण हो सकता है कि आपके पर्दे में छेद हो, सिर्फ बीच बीच में कान बहता हो और फिर इलाज करने पे ठीक हो जाता हो। सामान्यतः अगर आपके कान में पानी गया तो डिस्चार्ज आ सकता है, सर्दी जुकाम हुआ तो डिस्चार्ज आ सकता है, इलाज करने पे बंद हो जाता है। पर कान का ये जो बीमारी है ये डेंजरस नहीं है, न्यूसेंस ज्यादा है कि बार बार कान पकेगा, थोड़ा सुनने में फर्क आएगा। पर एक कान का रोग है जिसमें डिस्चार्ज ज्यादा नहीं रहे लेकिन बहुत बदबूदार रहे और कम रहे, उस परिस्थिति में शायद आपके हड्डी में इन्फेक्शन हो सकता है और वो हड्डी गलते हुए ब्रेन में भी जा सकता है या जी, बाकी हिस्सों में जा सकता है। तो इसलिए आपको किस तरह की बीमारी है ये किसी ENT विशेषज्ञ से मिलकर जरूर जान ले। पर्दे के छेद को भी ऑपरेशन किया जा सकता है लेकिन उसके लिए इमरजेंसी नहीं है, पर अगर हड्डी में सड़न है तो उसका ऑपरेशन जल्दी और जरूरी है।
1: तो मतलब कान बहे तो एक बार डॉक्टर से मिलना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, तो हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको एकदम सामान्य नहीं लेना है, हो सकता सामान्य सी ही बात हो लेकिन यदि गंभीर समस्या है तो भी डॉक्टर के पास जाने से वो स्पष्ट हो जाएगी। और आज जो इतना ज्यादा चारों तरफ शोर बढ़ गया है, सड़कों में जाए तो गाड़ियों के हॉर्न का शोर और DJ का शोर, कहीं भी जाइए शोर से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि कुछ डेसिबल्स हाई रहते जहां बड़े बड़े कारखाने हैं या रेलवे स्टेशन हैं जहां गाड़ियां आ रही, लेकिन अब तो कहीं भी सुरक्षित नहीं लगता। इससे हमारे शरीर को किस तरह का खतरा है इस ध्वनि प्रदूषण से?
0: शरीर और कान सबको खतरा है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम शरीर पे भी होंगे, आपकी अनिद्रा हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है। और कान में हियरिंग लॉस ध्वनि प्रदूषण की वजह से बहुत कॉमन है। पुराने टाइम में इंडस्ट्रीज में ही ज्यादा कॉमन था हियरिंग लॉसेस, क्योंकि वहां पे बहुत लंबे टाइम तक लोगों का एक्सपोजर बहुत तेज आवाज पे होता था। पर अब तेज शोर को हम अपने घर घर में लेके आ गए और हर सड़क पे हमारे प्रेशर हॉर्न्स DJ सबसे हम बहुत ज्यादा ध्वनि कर रहे हैं। पर ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम ध्वनि विस्तारक यंत्रों का न्यूनतम उपयोग करें। और DJ के लिए तो शायद समाज ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सरकारें तो उसके लिए उसको
1: कानून
0: बन गया है, कई बार कोर्ट्स भी बोलते हैं कि DJ क्यों बज रहा है, लेकिन शायद समाज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लोग चाहते कि हमारे उत्सव है तो हम बहुत DJ बजाएं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं जिनका हियरिंग पूरी तरह से चला गया, एक कान का मिनिमम 20, और सिर्फ उसका कारण DJ था
1: जी।
0: DJ शायद बहुत अच्छा संकेत नहीं है समाज के मानसिक स्वास्थ्य का।
1: सही बात है, कान फोड़ू संगीत कभी भी हमारे शरीर के, ना सिर्फ कानों के लिए, यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिल के लिए, सभी के लिए ये खतरनाक साबित हो रहा है।
0: और ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम DJ का उपयोग नहीं करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है 50 के बाद, जैसे ही हम बुजुर्ग होने की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे कानों में सुनने की क्षमता जो कम होती, क्या वो सामान्य है? और एक भ्रांति लोगों में ये भी रहता है कि यदि हम हियरिंग एड लगाएंगे तो हमारे को सुनाई कम देना शुरू हो जाता है, तो लोग उसको लगाने से भी हिचकते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
0: देखिए, उम्र बढ़ने के साथ आपके सुनने की क्षमता जरूर कम होगी, सबकी होगी, किस गति से होगी ये अलग अलग हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो शायद आपको थोड़ा जल्दी हो, पर एक उम्र के बाद सबको थोड़ा बहुत फर्क जरूरी आएगा
1: जी।
0: क्या उससे आपकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है? हियरिंग एड जरूर लगाइए। मशीन से आपको सुनने में फायदा होगा, उससे ज्यादा। अब देखिए, जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन हमारे देश में या दुनिया में बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिमेंशिया, कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन, कि हमारी जो तार्किक क्षमता है वो उम्र के साथ कम होते जा रही है। कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन के लिए एक मुख्य कारणों में से हियरिंग लॉस भी है। हियरिंग लॉस जब होता है तब आपके

0: जो ब्रेन में इनपुट कम जा रहा है, इसलिए आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में जो तार्किक क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, ये धीमे धीमे कम होते जाएगी। दूसरी जो उसकी कॉस्ट है वो सोशल है। जब आप सुनते नहीं है तब आप परिवार वालों से, समाज वालों से कटना
1: कटने
0: चाहते हैं
1: लगते हैं
0: क्योंकि
1: जी।
0: आप सुन नहीं रहे, और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वृद्धावस्था वो टाइम है जब आप लोगों से मिलना चाहते हो, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप शायद अब किसी व्यवसाय में बिजी नहीं है लेकिन फिर भी समाज से जुड़े रहना चाहते हैं,
1: जी
0: परिवार के लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, पर चूंकि आप सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए आप कुछ संवाद नहीं कर पा रहे हैं। हियरिंग एड लगा के आप अच्छे से सुन सकते हैं तो क्यों नहीं।
1: बिल्कुल
0: हियरिंग एड आपका कान खराब नहीं करेगा, आपके कान को सुनाई देना बेहतर कर देगा। हियरिंग एड जरूर लगाना चाहिए।
1: और मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें जो आज आपसे हो रही हैं, कई सारी सामान्य समस्याओं के लिए एक समाधान बता रही हैं। और डॉक्टर साहब, एक बहुत सामान्य सी एक समस्या होती है, लोग उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं या एलर्जी कई बार हो जाती है, तो हम दोनों को फर्क करके कैसे समझें कि साइनोसाइटिस और नाक की एलर्जी, ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं?
0: दोनों साथ में भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। एलर्जी जो है वो एक बिना इन्फेक्शन की बीमारी है जो कम्युनिकेबल नहीं है। एलर्जी से आप छींकेंगे, नाक से पानी आएगा, नाक बंद होगा, आंख में खुजली हो सकता है, ये एलर्जी के सामान्य लक्षण है जो कि दवाई से बहुत आसानी से कंट्रोल करी जा सकती है। एलर्जी की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपके फर्क आ सकता है और दवाइयों से आप अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। साइनसाइटिस नाक का इन्फेक्शन है,
1: जी
0: ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे जैसे साइंस विकसित हो रहा है, हमारे पास कुछ नए टूल्स हैं, एंडोस्कोप है, ज्यादा बीमारियों को बेहतर जानते हैं, तो अब साइनसाइटिस एक ग्रुप नहीं होके मल्टीपल टाइप्स हो गए, पर सबका इलाज संभव है। कईयों में दवाई पॉसिबल है, कईयों में ऑपरेशन लग सकता है, कई में ऑपरेशन और दवाई दोनों लग सकता है। जांच के तरीके सीटी स्कैन से बहुत एक्यूरेटली हम पता कर सकते हैं कौन सा साइनस में बीमारी है, उसको क्या एग्जैक्टली इलाज करने की ज़रूरत है। एंडोस्कोप से हम उसको प्रिसाइजली वहाँ पे देख सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। साइनसाइटिस के लिए सामान्य जो लक्षण होंगे, आपको नाक बंद हो सकती है, नाक से बहुत डिस्चार्ज, आपको गाढ़ा बलगम बार बार आ सकता है, आपको सिर दर्द या सिर में भारीपन लगातार हो सकता है, आपको खुशबू बदबू लेने की समस्या रह सकती है कि आप खुशबू नहीं समझ पा रहे हैं, आपको
1: तकलीफ
0: हो रही है, या फिर फेशियल हेवीनेस लगातार आपको बने रहे, आपको कंजेशन लगे कि मेरे
1: जी
0: को
1: जी।
0: बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये सामान्य साइनसाइटिस के लक्षण है जो जांच करके ही आगे बताया जा सकता है कि उसके लिए क्या ये करे, पर साइनसाइटिस एक बहुत सामान्य बीमारी है
1: और इसका इलाज बड़े अच्छे से
0: बिल्कुल
1: हो रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ बातें जो मन में हमेशा उठती हैं कि जो खर्राटे आते हैं, हम मोटे होते हैं, हमारा वजन बढ़ता है तो खर्राटे बढ़ते हैं, या उम्र के साथ खर्राटे बढ़ते हैं, और स्लीप एपनिया जैसी जो समस्या है, तो ये सब क्या कोई डिस्फॉर्मिटी की वजह से हो रहा है या इसको हम रोक सकते हैं?
0: देखिए, स्नोरिंग एक सामान्य प्रॉब्लम है जो लोग बाग खर्राटे लेते हैं, जो शायद दूसरे लोगों के लिए न्यूसेंस है, आपको शायद बहुत पता नहीं चले, लेकिन स्नोरिंग के साथ जब आपके श्वसन में दिक्कत आने लगती तब आपको उससे दिक्कत हो सकती है, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। आप दिन भर लगभग स्वस्थ रहते हैं लेकिन जैसे ही आप नींद में होते हैं, आपको खर्राटे की वजह से आपका श्वसन कुछ समय के लिए रुकता है, और अब हम जानते हैं कि उस दौरान आपके ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे होता है, कई बार हार्ट रिदम चेंज हो सकता है, और ऐसे पेशेंट्स का नींद कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। वो पूरी रात सोने, 10 घंटे भी सो लेंगे तो भी उनकी नींद जो रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से ये पेशेंट दिन भर, इनमें ऊर्जा की कमी रहती है, ये दिन भर सुस्ती रहते हैं, कई बार डे टाइम स्लीपिनेस, दिन में ये बैठे बैठे झपके ले सकते हैं। पर ऐसे पेशेंट्स, अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो सबसे पहले आप ड्राइविंग बंद कर दीजिए। 25% एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि ड्राइवर सो जाता है
1: जी।
0: और उसमें से ज्यादातर स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स हैं। जब लंबे रास्ता है, रास्ता खाली है, तब आपको झपकी आ सकती है जो प्राण घातक हो सकता है।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: आप ड्राइविंग मत कीजिए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अल्कोहल हमेशा आपके इसको बहुत गंभीर स्थिति में बढ़ा सकता है। और डॉक्टर को मिलिए, इसके लिए एक सिंपल दवाई या उपाय नहीं हो सकता लेकिन इसको एड्रेस करना जरूरी है। सिंपल वजन को जरूर कंट्रोल रखें, वजन कंट्रोल करने से, कम करने से आपके खर्राटे में काफी कमी आ सकती है।
1: बहुत सही। और डॉक्टर साहब, अब चलते चलते इतना जानना चाहूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में तंबाकू का सेवन अलग अलग प्रकार से होता है, गुड़ाखू के रूप में,

0: पान मसाला के रूप में, अलग अलग रूप में हम तंबाकू खा रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर का भाग या गला, इस सब में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, पहली चीज ये जानना जरूरी है कि तंबाकू किसी भी रूप में उतना ही घातक है, चाहे उसको पाउच के रूप में खाया जाए, चाहे गुड़ाखू, चाहे बीड़ी, चाहे सिगरेट, चाहे नस्वार। जैसे हम पुराणों में पढ़ते थे मायावी राक्षस, वैसे ही तंबाकू ये मायावी राक्षस है। इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर है वो राक्षस ही, तो उसको राक्षस की तरह देखना जरूरी है
0: जी।
1: छत्तीसगढ़ में बाकी नशे के लिए थोड़ा सा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, एक सामाजिक मान्यता होती है, लोग बाग शराब पी के लोगों के बड़ों के सामने नहीं जाना चाहते, बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पियेंगे, लेकिन गुड़ाखू के लिए सामाजिक मान्यता है। हर व्यक्ति पूरे घर भर करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए बड़ी सामाजिक मान्यता है, कई लोग उसको नशे में गिनते नहीं, पर गुड़ाखू भी नशा है और तंबाकू का ही रूप है। गुड़ाखू भी उतना ही खराब है जितना तंबाकू के और रूप है। भारत में

0: हर व्यक्ति पूरे घर भर करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए बड़ी सामाजिक मान्यता है। कई लोग उसको नशे में गिनते नहीं, पर गुड़ाकू भी नशा है और तंबाकू का ही रूप है। गुड़ाकू भी उतना ही खराब है जितना तंबाकू के और रूप है। भारत में 25 से 30% जो कैंसर्स है उनका कारण तंबाकू है। अगर हम तंबाकू का प्रयोग कम कर देते हैं तो लगभग कैंसर का रिस्क और बर्डन जो है वो 30% से कम किया जा सकता है। और ये बहुत प्रिवेंटिबल कैंसर है जिसको कि बहुत आसानी से बचा सकता है। जो आयु वर्ग है जिसमें कैंसर होते मैं पिछले 30 साल में देख रहा हूँ वो क्रमशः छोटा होते जा रहा है।
1: जी जी।
0: और ये बड़ा दुखदायी होता है हम लोगों के लिए किसी 30 वर्ष के या 35 साल के लड़के को कैंसर होते देखना, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ एक सामान्य बीमारी नहीं है, इसको ये पूरे परिवार को प्रभावित करता है।
1: आर्थिक, सामाजिक,
0: बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, बच्चों का एजुकेशन छूट जाता है, परिवार के फाइनेंशियल रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, पेशेंट कई बार अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाते हैं, लेकिन उसके बाद परिवार उभर नहीं पाता आर्थिक रूप से भी। और इसलिए ये बहुत जानलेवा चीज है, इससे बचिए, ये प्रिवेंटिबल है और इससे बचना बहुत जरूरी है। तंबाकू से छोड़ने के लिए आजकल हेल्पलाइंस है, उसको कॉल करिए, आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, पर तंबाकू छोड़िए और जल्दी से जल्दी छोड़िए।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब। और नाक, कान, गला, इससे जुड़े जो सामान्य प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जो सामान्य समस्याएं हैं और कैसे वो गंभीर होती हैं, इसके बारे में बड़े विस्तार से आपने आज हमारे श्रोताओं को बताया है। चलते चलते एक सामान्य रूप से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि हमारे ये अंग स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये सब आपके शरीर के अंग है, आपका शरीर हेल्दी होगा तो आपके नाक, कान, गला भी हेल्दी रहेंगे। तो स्वस्थ जीवन शैली, आहार अच्छा रहे, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त दिनचर्या अच्छी रहे, आपके विचार सकारात्मक रहे और बस स्वस्थ रहे। और आपके जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका नाक, कान, गला भी स्वस्थ रहेगा।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब। तो स्वस्थ जीवन शैली ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है और ये शरीर, इसे हमें स्वस्थ रखना है ताकि जिंदगी का भरपूर आनंद हम ले सकें।
0: बिल्कुल, जिंदगी के, यस, जिंदगी के आनंद के लिए आप, अगर आप स्वस्थ नहीं है आप स्वाद नहीं ले सकते क्योंकि आपकी जीभ खराब है, आप अच्छा स्मेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके नाक में बीमारी है, आप अच्छा म्यूजिक नहीं सुन सकते, आप कोई टीवी नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका कान खराब है, तो अगर जीवन एंजॉय करना है तो आपकी स्पेशल सेंसेस को बचा के रखिए और संभाल के रखिए, एंजॉय लाइफ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच अमृतधारा कार्यक्रम में शामिल रहे डॉक्टर राजेंद्र जोशी, जो इस अंचल के वरिष्ठ चिकित्सक है और नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ है। आज विस्तार से आपसे सारी बातें हुई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अमृत धारा कार्यक्रम में अभी आपने नाक कान गले की सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर राजेंद्र जोशी से ली गई भेंटवार्ता सुनी। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम महिला सभा।

जहाँ वृक्षों का होता सम्मान, वहीं बसती है खुशहाली और मुस्कान। हर पौधा बने भारत की नई पहचान, यही हो वन महोत्सव का महान अभियान। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का आज की महिला सभा में, जिसमें आज मैं हूँ प्रज्ञा सिंह राणा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जोहार। बहनों, सभी बच्चों के स्कूल तो खुल ही गए हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का आनंद ही कुछ और है। मैं भी मायके गई थी अंबिकापुर, वहां से जशपुर घूमने भी गए। हरी भरी वादियों से सजा जशपुर, कैलाश गुफा, बगीचा, बहुत ही आनंद आ गया। प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर लगता है कि धरती ने यहाँ का विशेष श्रृंगार किया है। इसी श्रृंगार को बनाए

रखने के लिए हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच विश्वास का उत्सव है। कहा गया है, जिस वृक्ष की जड़ें धरती में गहरी होती है, उसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं। यही बात किसी भी राष्ट्र पर भी लागू होती है। जिस राष्ट्र का संबंध अपनी प्रकृति से गहरा होता है, उसका भविष्य उतना ही उज्ज्वल होता है। बहनों, हमारे लिए वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। भारतीय परंपरा में तो प्रकृति को कभी संसाधन माना भी नहीं गया है, बल्कि माँ का स्थान दिया गया है। हमने नदियों को माता कहा है, पर्वतों को देव स्वरूप माना है और वृक्षों में ईश्वर का वास देखा है। हमारी संस्कृति का यह दृष्टिकोण आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन सकता है। बहनों, प्रकृति की उपेक्षा का परिणाम केवल पर्यावरणीय रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है। प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही भविष्य का मार्ग है। इस संतुलन की सबसे मजबूत कड़ी है वन। जी हाँ, एक स्वस्थ वन केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, वह वर्षा को आकर्षित करता है, नदियों को जीवित रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जैव विविधता की रक्षा करता है और असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। इसलिए सिर्फ वन विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वनों की रक्षा करने का, समाज को स्वयं प्रकृति का संरक्षक बनना होगा। पिछले एक सप्ताह से देश भर में विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं, महिलाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया है। यह उत्साह सराहनीय है, लेकिन पौधा लगाना सिर्फ शुरुआत है बहनों। उसे जीवित रखना, उसकी रक्षा करना और उसे वृक्ष बनने तक सहेजना ही वास्तविक पर्यावरणीय सेवा है। आज आवश्यकता केवल अधिक वृक्ष लगाने की नहीं, बल्कि अधिक संवेदनशील बनने की है। बहनों, यदि हम अपने घरों में जल बचाएं, वर्षा जल का संचयन करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कागज का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, स्थानीय प्रजातियों के पौधे को लगाएं और सबसे जरूरी बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करें, तो हम बिना किसी बड़े संसाधन के भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रकृति का संरक्षण किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला संस्कार है। बहनों, यदि प्रत्येक परिवार भी एक पौधा लगाएगा और उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखे, तो आने वाले वर्षों में करोड़ों नए वृक्ष हमारी धरती को हरा भरा बना सकते हैं और ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। वन महोत्सव समापन सप्ताह के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम केवल पौधे नहीं लगाएंगे, उन्हें जीवन देंगे। हम केवल प्रकृति से लाभ नहीं लेंगे, उसके प्रति अपना कर्तव्य भी निभाएंगे। हम केवल हरियाली की बात नहीं करेंगे, हरियाली बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पेड़ों की हर डाल पर भविष्य मुस्कुराता है, हर पत्ता जीवन का मधुर गीत गाता है। आओ ऐसा भारत बनाएं जहां हर सांस में हरियाली हो, हर हृदय में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता हो और हर नागरिक पर्यावरण का प्रहरी हो। वन महोत्सव मनाने का महत्व भी तो यही है बहनों, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जाए, जैव विविधता को बढ़ाया जाए, स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़े, मिट्टी के कटाव कम हो, लोगों में वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित हो। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नदियों की कलकल, पंछियों का मधुर गान, पेड़ों से ही महके अपना हिंदुस्तान। आओ वन महोत्सव पर यह प्रण दोहराए, धरती माँ का हरित श्रृंगार फिर लौटाए, धरती माँ का हरित श्रृंगार फिर लौटाए। फिलहाल के लिए बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। आइए ब्यूटी मंत्र में, जहां मिले बेहतरीन ब्राइडल मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, स्मूथनिंग और स्किन केयर की प्रोफेशनल सेवाएं। आकर्षक ऑफर के साथ आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ब्यूटी मंत्र, पता है महिला थाना के पास, मसानगंज।
1: बहनों, घूमने जाने का शौक तो हर किसी को रहता है, लेकिन कभी किसी परिस्थितिवश जा नहीं पाते। इसीलिए तो महिला सभा में हम हमारे क्रम पर्यटन स्थल पर आपको अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। लेकिन इस बार पर्यटन स्थल पर हम आपको थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी बातें करेंगे। जी हाँ, आज पर्यटन स्थल पर हम बातें करेंगे मंदिर दर्शन और सामाजिक जिम्मेदारी, जिसमें हमारे साथ है आयुषी परिहार जी। तो आइए सुनते हैं पर्यटन।

0: पर्यटन स्थल में आयुषी परिहार को।
1: बहनों, पर्यटन केवल घूमने फिरने का साधन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और प्रकृति को जानने का एक सुंदर अवसर है। जब भी हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की परंपराओं, खान पान, कला और लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। आप सभी तो जानते ही हैं, हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियाँ, समुद्र तट, प्राचीन मंदिर, भव्य किले और विश्व धरोहर स्थल हमारी समृद्ध विरासत का परिचय देते हैं। पर्यटन न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। आजकल तो पर्यटन स्थल में लोग मंदिर भी जाते हैं। हाँ, मंदिर से याद आया कि आज पर्यटन दर्शन में हम मंदिर दर्शन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज पर्यटन स्थल में हमारे साथ हैं आयुषी परिहार जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आयुषी परिहार जी आपका हमारे आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, प्रणाम, जय छत्तीसगढ़, जय भवानी। मैं आयुषी परिहार और आप लोगों को मंदिर दर्शन के सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हम सभी मंदिर जाते हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को मन के मंदिर से देखते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं नतमस्तक होके। लेकिन बहनों, आप ही लोग समझो कि मंदिर जाके पूजा करना ही पर्याप्त है क्या? तो नहीं, सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।
3: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी जी।
2: और मंदिर हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि सेवा, प्रेम, करुणा, दया, मानवता का भी संदेश देते हैं। यदि हम मंदिर से लौटकर अपने व्यवहार में इन गुणों को अपनाएं, तभी हमारा दर्शन सफल होता है। बहनों, सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उनका ईमानदारी से पालन करें। जब हम मंदिर जाएं तो कुछ छोटे छोटे बातों का ध्यान रख सकते हैं।
3: जी, किस तरीके के बातों को ध्यान रखने की बात कर रही हैं आप आयुषी जी?
2: मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें, जैसे फूलों को नदी में ना बहाएं, नारियल फोड़ते वक्त कचरा वहीं पर ना छोड़ें, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान अगर ना दिखे तो पूछ लें कि कहाँ पर है। अगर धूप बत्ती, अगरबत्ती अपन दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं भगवान को, तो जो जगह है वहीं पर उनको जला के रखना चाहिए। महिला होने के नाते बच्चों को भी दिखाना होगा कि हर चीज का सही जगह है, उसे सही जगह पर लगाएं। अपन घर में भी बच्चों को सिखाते ही हैं कि बेटा यहाँ पे अगरबत्ती रखो, यहाँ पे दिया रखो, ऐसे पूजा करो, तो एक संस्कार हम बच्चों को देते हैं, तभी बच्चे सीखते हैं और आगे उसको करते हैं।
3: जी,
2: और जिस जगह पर लिखा रहता है कि नदियों में स्नान नहीं करना है तो वहाँ ना करें। आप तीर्थ समझ कर स्नान करेंगे पर वो नदियों का उद्गम हो सकता है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी है कि आप नदी में स्नान ना करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, प्रसाद या भोजन की बर्बादी ना होने दें। प्रसाद यदि आप वो मिलता है तो स्वच्छता से खाएं और वहाँ जिस चीज में मिलता है, जैसे पन्नी है या कुछ भी चीज है, तो आप उसको वहाँ ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। कतार में रहकर अनुशासन का पालन करें। बुजुर्गों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों की सहायता भी करनी चाहिए। मंदिर में शांति और मर्यादा बनाए रखें। जोर जोर से बातें न करें, संगीत न बजाएं, मोबाइल का उपयोग कम करें, कैमरे का यूज न करें। भगवान की मूर्ति अपने आँखों में समा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए। यदि मना किया गया है तो फोटो ना खींचें भगवान की। मंदिर परिसर में सामुदायिक कार्यों में भागीदारी होना चाहिए। यदि हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं सामाजिक, तो हम उसको कर लें वहाँ पे दिखता है तो। और सामाजिक समरसता, एकजुटता रहनी चाहिए, सभी में एक भाव होना चाहिए।
3: जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि सभी को एक भाव से देखना चाहिए।
2: जी, ऐसा होना चाहिए, लोगों को करना भी चाहिए। करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, दर्शन भी आप आसानी से कर पाएंगे।
3: जी।
2: तो सभी दर्शन

0: शरणार्थियों के साथ समान और सम्मानजनक बात करना चाहिए।
1: जी,
0: नई पीढ़ी जो है मंदिर को एक मनोरंजन का जगह बना लेते हैं, साधन बना लेते हैं, वहां जाके फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ियों को मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और अपनी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए और देना भी चाहिए। हम जैसे घर में बच्चों को देते हैं वैसा उनको देना चाहिए कि बेटा वहाँ ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ये मंदिर हमारे सामने है, तो उन सभी जगह को सम्मान करना चाहिए और धरोहर संरक्षित होना चाहिए, है ना। मंदिर में लोग स्वेच्छा से साफ सफाई और प्रबंधन कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। यदि इच्छा है तो आप कर दीजिए कि आप मंदिर में स्वेच्छा से जाइए, अपने हिसाब से साफ सफाई करिए। जैसे जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो अपने जाके वहाँ सफाई करें तो उससे आपको पुण्य मिलता है और जरूरतमंदों को सहायता और चिकित्सा सेवा भी कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कार भी बहुत जरूरी है। प्राचीन काल की तरह आज भी कई मंदिर परिसरों में बच्चों को, युवाओं के लिए संस्कार शालाएं, योग कक्षाएं, धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जो कि समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे बिलासपुर के वेंकटेश मंदिर में ये कक्षाएं लगती हैं। सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन से, जैसे विभिन्न त्योहारों से, मेलों और भजन कीर्तन के माध्यम से स्थानीय कला, संगीत और परंपराएं जीवित रहती हैं। सामाजिक समरसता से प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। बहनों, मंदिर परिसर केवल पूजा पाठ के स्थान नहीं होते, ये भारतीय संस्कृति समरसता के प्रमुख केंद्र होते हैं। हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने परिवार समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन बहन, एक प्रश्न हम सबको स्वयं को पूछना चाहिए, क्या भगवान सिर्फ पूजा चाहते हैं या हमारे कर्म भी? भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वे सब में भाव देखते हैं। यदि मंदिर से लौटते हैं तो हमारे मन में प्रेम, व्यवहार, करुणा नहीं है, समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, तो पूजा अधूरी है। सच्ची भक्ति वही है जो मानव सेवा में दिखाई देती है। मंदिर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल व्यवस्थित रखते हैं, परिसर को स्वच्छ रखते हैं, कतार का पालन करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यही समाप्त नहीं होती। यदि हमारे आसपास कोई भूखा है उसे भोजन करा दें, यदि वृद्ध अकेला है तो उसका सहारा बन जाएं, कोई बीमार है तो उसकी सहायता करें, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और हम उसकी पढ़ाई में सहयोग करें, तो यही भगवान की सच्ची पूजा है। हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, आइए अपने जीवन में दीप जलाएं। तो दीप किसका जलाएं? ज्ञान का जलाएं, सेवा का जलाएं और मानवता का जलाएं। आज समाज को बड़े दान की नहीं, छोटे छोटे अच्छे कार्यों की आवश्यकता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जल की बचत करना, पेड़ लगाना, जल जंगल जीवन बचाना, महिलाओं का सम्मान करना, बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, यही वह कार्य है जो हमारे मंदिर दर्शन को सार्थक बनाते हैं। कहा भी गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तब भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। आज समाज को केवल धार्मिक लोगों की नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता है। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, यही सच्चा धर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, अर्थात दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। संत महापुरुषों ने यही संदेश दिया है कि ईश्वर हर प्राणी में निवास करते हैं, इसलिए हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह भी भगवान की सेवा करते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें कि मंदिर केवल दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि वहां से मिले संस्कारों को अपने जीवन में उतारेंगे, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे।
1: जी,
0: ये हमारा संकल्प है, समाज के आदर्श नागरिक बनेंगे। मंदिर में किया गया प्रणाम तभी सफल होता है जब हमारे हाथ सेवा के लिए उठें, हमारे शब्द प्रेम से भरे हों और हमारे कर्म समाज के कल्याण के लिए हों।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा आयुषी जी।
0: तो बहनों, हम केवल मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं करेंगे बल्कि

0: कि भगवान के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, हम अपने घर, समाज, देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आयुषी जी।
0: और आज से हम इन सब का पालन करेंगे, हम प्रेम बांटेंगे, सेवा करेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। मंदिर में सिर झुकाना आसान है, लेकिन इंसानियत के आगे दिल झुकाना महान है। भगवान की पूजा तभी सफल होती है जब हमारे कर्मों में समाज का कल्याण होता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि मंदिर दर्शन के साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही भगवान की सबसे प्रिय पूजा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा यूसी जी आपने, और इतनी अच्छी तरीके से हमारी बहनों को ये जानकारी दी कि मंदिर सिर्फ दर्शन नहीं करना है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाना है, ताकि देश का, समाज का, परिवार का कल्याण हो और हमारे अंदर एक अच्छे संस्कार जन्म ले। आप यहाँ पर आई आयुषी जी और इतनी अच्छी जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो बहनों, सुना आपने कि अब जब भी हम पर्यटन स्थल पर जाएं, न केवल मंदिर में बल्कि कहीं भी जाएं, तो केवल उसकी सुंदरता का आनंद ही ना ले बल्कि उसकी स्वच्छता और गरिमा बनाए रखने का भी संकल्प ले। याद रखिए बहनों, एक जिम्मेदार पर्यटक ही सच्चा पर्यटक होता है। पर्यटन को केवल यात्रा नहीं बल्कि सीखने, प्रकृति से जुड़ने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का माध्यम बनाए। आइए घूमे भारत, जाने भारत और सजाए भारत। इसी के साथ आज का पर्यटन स्थल बस यहीं तक।
1: बहनों, अभी पर्यटन स्थल पर हम सुन रहे थे आयुषी परिहार जी को और हम बातें कर रहे थे मंदिर दर्शन और सामाजिक जिम्मेदारी।
2: आपकी खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। आइए ब्यूटी मंत्र में, जहां मिले बेहतरीन ब्राइडल मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, स्मूथनिंग और स्किन केयर की प्रोफेशनल सेवाएं। आकर्षक ऑफर के साथ आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ब्यूटी मंत्र, पता है महिला थाना के पास, मसानगंज।
1: बहनों, बरसात का जो मौसम होता है वो अपने साथ कई बीमारियों को ले आता है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम कुछ अच्छा हेल्दी खाना खाएं जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बरकरार रख सके। इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं रसोई घर में पालक ओट्स चीला, जिसके बारे में बता रही है स्वाति उपाध्याय। तो आइए सुनते हैं इसकी रेसिपी।
3: मेरा नाम स्वाति उपाध्याय है और आज मैं आपको बारिश के मौसम में खाई जाने वाली एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट डिश पालक ओट्स के चीला के बारे में बता रही हूँ। पालक ओट्स चीला रेसिपी 2 से 3 लोगों के लिए। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है। 1 कप ओट्स पीसकर पाउडर बना लें, 1 कप बारीक कटा हुआ पालक, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये वैकल्पिक है, आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आवश्यकतानुसार पानी, 1 से 2 छोटे चम्मच तेल या घी। बनाने की विधि इस प्रकार है। 1 बाउल में ओट्स पाउडर, बेसन, पालक, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी और नमक मिलाएं। धीरे धीरे पानी डालकर डोसा के जैसा घोल तैयार करें, गाढ़ा। घोल को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगाएं। 1 कलछी घोल डालकर गोल आकार में फैलाएं। किनारों पर थोड़ा सा तेल डालें और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। पलटकर दूसरी तरफ भी 2 मिनट सुनहरा होने तक सेकें। गर्मा गर्म हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। हेल्दी टिप, प्रोटीन बढ़ाने के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच दही या थोड़ा पनीर कद्दूकस करके घोल में मिला सकते हैं। बच्चों के लिए इसमें कद्दूकस की हुई गाजर या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं।

0: ये नाश्ते, टिफिन या हल्के डिनर के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
1: धन्यवाद।
2: बहनों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज की महिला सभा से विदा लेने का। लेकिन बहनों, आप भी हमसे बातें कर सकते हैं, अपने पसंद के गीत भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको लिखने होंगे पत्र या हमें भेजने होंगे अपने ईमेल पर अपने पसंद के गीत। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com। और अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं और हमारे कार्यक्रम की समीक्षा करना चाहते हैं तो हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन है 495006। और आप YouTube चैनल पर भी हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं। बहनों, अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें जरूर मेल कीजिए। हमारे महिला सभा का अलग से ईमेल है mahilasabha@gmail.com। तो ढेर सारे चिट्ठी भेजिए और मेल भेजिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से विदा दीजिए अपनी बहन प्रज्ञा सिंह राणा को। नमस्कार।

महिला सभा, ये कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने प्रसारित होगा 6:20 पर और फिर 7 बजे से। 7:20 पर कार्यक्रम ग्राम सभा प्रसारित होगा। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा कृषि विकास में सरकारी योजना मन के योगदान। किसानवाणी कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 पर। इसमें आज की बात होगी आत्मनिर्भर भारत मीठी क्रांति, साथ ही आज का प्रश्न मंडी मौसम पर जानकारी प्रसारित की जाएगी और स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत सुनिएगा। कलाकार होंगी आशा भोसले। रजनीगंधा कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से रात्रि 11 बजे तक।

आइए अब आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित होगा प्रातः 6:05 पर। खेती की बात कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 6:30 पर। इसमें कल जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ बागवानी विषय पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। वाचन चित्रलेखा तिवारी का होगा। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा 7:05 पर। यादों के झरोखे से पुराने फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर। इसमें कलाकार होंगे दुखीराम मरकाम, अनीता भानु, दिलीप दाऊ और साथी। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:00 से और फिर 11:30 पर और फिर 12:00 से शाम 5:00 तक। संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर गोट प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। युवा जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा 5:35 पर। इसमें आज की बात होगी युवाओं का समय पर खान पान और क्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनिएगा 6:20 पर और फिर 7:00 से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:20 पर। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा आइसो पाम कार्यक्रम। इस विषय पर साथ ही सफल कृषक से भेंट क्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुगम संगीत

प्रसारित होगा, कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के पगरेती मा अबले थोड़किन देर बाद मुख्यमंत्री निवास मा हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही ने कि ये बच्छर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई लाकाली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीतमय श्रद्धांजलि दे जाही। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की पगरेती में अबले थोड़किन देर बाद संध्या 7 बजे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुरू होही। ये बैठक में भाजपा अवैया मानसून सत्र लेके अपन रणनीति तैयार करही। ये बैठक में विपक्ष ढाले उठैया मुद्दा ऊपर गोट बात हो के संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ले पहली मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत आज रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ले भेंट करी। ये दौरान अवैया मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन समेत आने आने संसदीय विषय मनु पर गोट बात हुई। संगे संग बछर 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान पर संभावित नामों पर घलो विचार विमर्श करेगी। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होही। ये सत्र 17 जुलाई तक चलही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगति परियोजना के शुभारंभ करी। एकर उद्देश्य 20,000 ले ज्यादा कृषि उद्यमी और 20 लाख किसान मल्ला सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया ले गोट बात करत श्री चौहान विकसित भारत के लक्ष्य ला पाए बर कृषि विकास समृद्ध गांव और समृद्ध किसान मन के विकास की जरूरत ऊपर बल दीन। उमन कहने कि सरकार ये लक्ष्य ला पाए बर हर संभव कोशिश करत है। श्री चौहान कहने कि सरकार है प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमी मल्ला प्रशिक्षित करे के फैसला ले है। उमन कहने कि ये उद्यमी एक गांव के कृषि काम में बदलाव लाए बर 100 ले 200 किसान मन के संग मदद करते। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहने कि ये बच्छर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही। ये ट्रेन ला रोज चलाए जावत ट्रेन मन के अलावा अलग ले चलाए जाही। नई दिल्ली में श्री वैष्णव कहने कि पूरी रेलवे स्टेशन में 30,000 यात्री मन पर अस्थायी व्यवस्था करी जाही। मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में राज्य शासन के जम्मू विभाग के सचिव मन की बैठक लेके योजना और कामकाज की समीक्षा करी। बैठक में मुख्य सचिव जम्मू विभाग मन में बैकलॉग के खाली पद मन के भर्ती पर कार्यवाही जल्दी शुरू करे के निर्देश दिन। संगे संग विभागीय सचिव मन ला उखर विभाग के योजना के काम ला सरलक देख रेख करे बर घलो कही। बैठक में मुख्य

0: सचिव है, ई ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियत निर्णय, डैशबोर्ड, सुघर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई प्रगति, सीजी स्टेट पोर्टल, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग के योजना, पीएम सूर्य घर बिजली समेत आने आने योजना मन के जानकारी ली। प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत मन मा आज रोजगार और आवास दिवस के आयोजन करेगी। इधर माध्यम ले गांव वाले मन ला विकसित भारत जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कामकाज के जानकारी देगी। संगे संग पात्र हितग्राही मन ला आने आने जन कल्याणकारी योजना मन के संबंध में घलो जागरूक करेगे ही। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक मन के पंजीयन, ई केवाईसी और पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बनत आवास मन के कामकाज की समीक्षा करेगी। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा हुए में आयोजित सहकारी सप्ताह के काली समापन होगी। ए मौका में रायपुर में राखे के कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण करी। उमन बताइने कि प्रदेश में करीबन 1300 सहकारी समिति मन के गठन करेगी ही। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन के सीधा प्रसारण घलो करेगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक वित्त बछर 2025-26 में 216 करोड़ रुपया के फायदा पाए है। कार्यक्रम के सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता घलो संबोधित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। वर्षा के मौसम में बिजली ले हो या दुर्घटना मले बचाव खातिर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लोगन मले विशेष सावधानी बरते के अपील करे है। कंपनी है कहीं ने कि बिजली के खंभा, टूटे तार, ट्रांसफार्मर और आने आने विद्युत उपकरण मन ले सुरक्षित दूरी बनाए रखे और एमा कोनो किस्म के छेड़छाड़ झन करे और कोनो मेर बिजली के तार या उपकरण हा टूटे फूटे दिखे तो तुरते एखर बर खबर टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली एप या तीर तखार के वितरण केंद्र मन ला देवे। सरलग होत वर्षा ला देखत कृषि विशेषज्ञ मन ह प्रदेश के किसान मन ला सलाह दे है कि खेत मन में पर्याप्त पानी होए मा मचाई करके धान के रोपाई कराए। तीर्थकार मन नर्सरी नहीं है त किसान मन ह अंकुरित बीजा के लेही विधि ले ड्रम सीडर या छिटकवा विधि ले बुवाई कर सकत है। विशेषज्ञ मन ह कहिने कि मानसून के देरी ले आए के सेती किसान मन 125 दिन ले 130 दिन मा पकैया जल्दीच और मध्यम बेरा के धान किस्म के चुनाई कराए। सीधा बोवैया किसान मन है 15 जुलाई तक और रोपा लगाने वाला किसान मन है 30 जुलाई तक काम पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञ मन है धान के सीधा बोवाई में खर पतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे और रासायनिक उर्वरक के संग हरियर खाद और जैव उर्वरक मल्ला बउरे के आग्रह करे है। मुख्यमंत्री सुदेश साय है काली 8 जुलाई के रायपुर के डुमर तराई में नवीन थोक बाजार के नामकरण और लोकार्पण करही। समारोह के पगरेती आवास मंत्री ओपी चौधरी करही। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में करीबन 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित ये आधुनिक थोक बाजार व्यापारी मन के जरूरत ला ध्यान में रखत आधुनिक सुविधा मल्ले बनाए गए है। ये बाजार रायपुर समेत पूरा प्रदेश के व्यापारिक विकास ला नवा दिशा दे के संग आर्थिक गतिविधि मल्ला घलो नवा गति दी है। पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाईला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ता काशी मंच में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाहे। संस्कृति विभाग को तीले राखे गए ये कार्यक्रम मंझनिया 2 बजे शुरू होही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मन शामिल होही। प्रदेश के पद्मश्री और राज्य अलंकरण ले सम्मानित कलाकार मन के संग आने आने लोक कलाकार मन गीत पंडवानी और लोक कला के प्रस्तुति के माध्यम ले स्वर्गीय तीजन बाईला श्रद्धांजलि अर्पित करही। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 जुलाई ले 31 अक्टूबर तक पर्यटक

0: पर बंद रही। वन्य जीव मन के प्रजनन काल ला सुरक्षित राखे बर ये फैसला ले गए हे। फेरे दौरान बलौदाबाजार नव मंडल ह बार नवापारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द सेक्रेट गार्ड लैंड के शुरुआत करे हे। ये पर्यटन सर्किट मा सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चर सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर के देव हिल्स इको इथेनिक स्टे, कोडार डेड समेत कतकोन प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हवे। अब थोरकी समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय के प्रगति में काली 8 जुलाई के नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। कृषक विभाग डहर ले ये बच्चर के डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार पर प्रदेश के पात्र किसान मन ले आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक किसान मन 31 जुलाई तक आवेदन कर सकत है। पुरस्कार ले संबंधित पात्रता नियम और आने आने जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट में उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप पर ऑनलाइन आवेदन करिया के आज आखिरी दिन है। ये योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चुने गए लड़का मल्ला हर एक महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंटा फिर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देसाय के प्रगति में अबले थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री निवास में हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही कि यह बच्चर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाईला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत, राष्ट्रपाल राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये डोंगरगांव से, अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल विनीत और सोनम वर्मा कुरावली से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून सुरीत रमेश साहू, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम उषा ऋषभ सिंह, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता अरुणा सुलोचना और चेतन भगत, सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार चंद्रकला रेवाड़, आसमा परवीन आमना परवीन वली भाई अंसारी दिल्ली शहर से, फागू राम यादव तेजस्वी ओजस्वी यादव ज्योति संबलपुर कांकेर से, मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी आप सभी बुलंदशहर से, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफ्रा और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश कन्नूलाल रजक मुरली क्षत्रिय, ऋषि सेन रितेश कंचन और माही सेन सावंतपुर से, पप्पी भाटिया सोनू एंजल और हरजिंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से, नांदेड़ से संतोष सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, वैशाली शैलेश टुकटुक प्रिंस एकांश सुमित और ध्वनि गवहणकर बहादुरा नागपुर से, जालंधर से मीना कौर और मन्नत नूर, यावतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा और श्रव्या रामटेके, बचकामल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदु भुवन कामरी आप सभी भाटापारा से, भाटापारा अवरेठीपारा से अनीता वीणा नेहा मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार खुशनसीब अब्दुल हक जियाउल हक मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, आप हैं जालौन उत्तर प्रदेश से संतोष कुमार आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी राजकोट से, रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो एलिया जा नायाब और लड्डू, राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू, आप सभी हाँसी

से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जगराओं से, भाटापारा दुर्राबांधा से प्रमोद देव कुमार, नवीन और युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठ्ठा, अलका मिठ्ठा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण, अंजनी ज्योति निधि, निखिल यश, प्रयाण शिवम, रेखा धनेश्वरी वर्मा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लकी अली और रमैया की आवाजों में कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। पेश है कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं अशोक, प्रमिला और आसमा श्याम को।

उमर भिलाई से, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर कचरीबाई, दीपक जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना, हसन नाजिया और इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शदाब खत्री, लुतरा खमरिया से अकरम अमीन और अर्श अतीका, लोहगढ़ ठकुरवाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूल, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगणी से दिनेश और करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद, चंद्रकांत वर्मा, बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तीव्रता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष, सार्थक और शौर्य नामदेव, रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, बुड़गहन से कवर्धा, पुतकी कला से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिनी साहिल, भारती बघेल, गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, फजिलका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी हिमाक्ष, राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, मंडी डबवाली से वर्षिंगी, महाराष्ट्र से अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार मानकर, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, जनकपुरी से सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, साथ में है प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला से, जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी राजकोट से, नजमूल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, आप सभी तखतपुर से, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, पानीपत से, चचेरी लोरमी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, धमतरी से कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन, कुम्हारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार, शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान रायगढ़ से, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया अयान। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में, मजरूह का लिखा जतिन ललित का संगीतबद्ध किया, कभी हाँ कभी ना फिल्म का ये गीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा, हनुमान उत्तम जमदाड़े, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पावन, संजय, दीपक और कमल उमा, लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहिम, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर और राघव गुप्ता, राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी राजकोट से, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन, पीपल रोड सरगांव से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा, नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में देव कोहली का लिखा राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में। अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डीकेश, वाशु, डाली, पूर्वेश साहू, नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, पांडर कावड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह धोरनी, करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैकरा, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, आप सभी भाटापारा से। लीजिए पेश है आप सबकी पसंद पर दोस्ताना फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पेश है दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

दोस्ताना फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ।

0: प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी एक गांव की कृषि कार्य में बदलाव लाने के लिए 100 से 200 किसानों के साथ सहयोग करते हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगी। इस बैठक में भाजपा आगामी मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आगामी मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन सहित विभिन्न संसदीय विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही वर्ष 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए संभावित नामों पर भी विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से ग्रामीणों को विकसित भारत जी रामजी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों का पंजीयन, ईकेवाईसी और पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने कहा है कि कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्याय संगत नहीं है। अदालत ने उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक लेकर कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष के प्रतिष्ठित डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए प्रदेश के पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित पात्रता नियम और अन्य जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे

0: समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक कलाकार इसमें शामिल होंगे। पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने प्रदेश के किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पर्याप्त पानी होने पर मचाई कर धान की रोपाई करें। यदि नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो किसान अंकुरित बीजों की लेही विधि से ड्रम सीडर या चिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि मानसून के देर से आने के कारण किसान 125 से 130 दिन में पकने वाली शीघ्र और मध्यम अवधि की धान किस्मों का चयन करें। सीधी बुआई करने वाले किसान 15 जुलाई तक तथा रोपाई करने वाले किसान 30 जुलाई तक का कार्य पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञों ने धान की सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने और रासायनिक उर्वरकों के साथ ही हरी खाद तथा जैव उर्वरकों का उपयोग करने का आग्रह किया है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या फिर निकटतम वितरण केंद्र को दे। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्य जीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान बलौदाबाजार वन मंडल ने बारनवापारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द स्क्रेड गार्लैंड की शुरुआत की है और इस पर्यटन सर्किट में सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चरल सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर का देव हिल्स इको एथनिक स्टे, कोडार जलाशय सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से प्रदेशभर में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार जताए हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल 8 जुलाई को शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कल 8 जुलाई को रायपुर के डुमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 338 पदों पर भर्ती की जाएगी। GST विभाग ने फर्जी अंक सूची के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 2 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों कर्मचारियों का चयन वर्ष 2013 में वृत्त के पद पर मेरिट के आधार पर हुआ था। बाद में दोनों की पदोन्नति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हुई। जांजगीर के जिला पंचायत के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ महिला आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसरिया मौजूद थीं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के औद्योगिक

0: क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कल शाम एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। और दुर्ग पुलिस ने सुपेला थाना क्षेत्र में तीन युवकों को प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी, चार मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार। और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव, देवशंकर आप छत्तीसगढ़ से, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम, बुंदेलखंड महोबा उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव, आरव और अर्पिता, सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव पैठण से, अकलतरा पोड़ीभाटा से दिलीप, चोवाराम, यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, रजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग सहारनपुर से, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह, राहुल, चरौदा भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना दिल्ली से, पिंटू रजिंदर सिंह ओबेराय जनकपुरी से, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, अपूर्व अनुपम सिंह और राकेश कुमार जमशेदपुर से, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता प्रिंस और एकांश गम्हाणकर, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप आप मोहाली चंडीगढ़ से, शुभचंद बजाज साहिल और बिट्टा बजाज कालका से, अंबागढ़ चौकी से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, राजेश, राजदीप, राशि और शीतल राजेश संभाजी नगर से, पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू लच्छनपुर से, वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफजाल ताज डुमराव से, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला, विशान नवानकर, फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र, हेयंश कुमार चंदन सौंगा मगरलोड से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुमार शानू के स्वर में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया, फूल और कांटे फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, कवर्धा लोहारेडी से अशोक कुमार, लीलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष, मयंक और जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, कुरासिया कालरी चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कलिंद्री लहरे, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता पटियाला से, यावतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु आप सभी दिल्ली से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यमानंद, जाफराबाद कालेगांव से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश,

प्रणाली सरवद देशमुख, तुलसी मस्किन वीना चैतन्य और मेघा मस्किन दिल्ली से, नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश और पित्रेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्विनी अमरदीप, पशुपति टिंकू मुस्कान, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा दतरेंगी से, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रेयांश, कान्हा आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू। आप सभी साथियों ने सुनना चाहा है अलका याग्निक के स्वर में कातिल शेफाई का लिखा, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया, फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए ईमेल भेजा है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश किरण, लव्या आरव और एस के पप्पी, सहारनपुर से आशु, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद, वीणा और विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत और कमल मक्कड़, करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिमा शर्मा और माया कुमार। तो लीजिए, आप सबकी पसंद पर पेश है आशा भोसले और शशि कपूर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया सुहाग फिल्म का ये गीत।

सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:20 हुए हैं, आइए चलें ग्राम सभा में।

0: ग्राम सभा सुनैया जम्मोस, किसान भाई श्रोता मल्ला जीतू भाई के राम राम, जय जोहार भाई। बतावा का हाल चाल है, कैसन है? देखा भाई, सब जी अब कहत रहन कि पानी पानी पानी पानी पानी नहीं आवत है, और पानी गिरीस तो ऐसन गिरीस के घर मा धंधाय रहन, घर मा धंधाय रहन। तो भाई अभी पानी गिरीस तो किसान भाई मन के चेहरा खिल गए, और चेहरा खिलेस तो खेती किसानी के बूता घलो चालू हो गए। खेती किसानी के बूता इसे कतको किसान भाई मन बाग वाले व्यवस्था करते, वो मन अपन व्यवस्था कर डरिन। कतको किसान भाई के खेत खार मा जेन थरहा है तेन नी छिंचा रही से ओला छींच डरिन, और कतको किसान भाई मन जिखर तिर पानी के व्यवस्था रहीस होही तेन मन का करिन है, पानी ला बांध के रोक के छेक के रख के वो मन पहली ले ही व्यवस्था कर डरिन थरहा दिए के। तो कतको किसान मन अभी बढ़िया ढंग से धान ला रोपे व्यवस्था कर दिन, ऐसन किसान मन 2-4% हो हैं, तो कुल मिला के जिन पानी आइस वो बढ़िया ढंग से हमन ला खुशहाली देस, और गर्मी के समय रही से अभी 15 दिन पहली तो हमन लगीस कि कब पानी गिरही कब पानी गिरही, तो देखा पानी बढ़िया ढंग से गिरीस और हमन ला खेती किसानी करे बर आगू बढ़ाइस। किसान भाइयों बात करबो हमर देश के हमर राज के, तो हमर देश राज है कृषि प्रधान देश है जी हाँ, आनी बानी के खेती किसानी होते, और यहाँ के जन आजीविका है तेन हा खेती किसानी ऊपर निर्भर है। तो आप मन सो औ गोठियाबो पहली आवाज सुघर संदेश मतलब सुन लेता।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। आइए ब्यूटी मंत्र में, जहां मिले बेहतरीन ब्राइडल मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, स्मूथनिंग और स्किन केयर की प्रोफेशनल सेवाएं। आकर्षक ऑफर के साथ आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ब्यूटी मंत्र, पता है महिला थाना के पास, मसानगंज। आपकी खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। आइए ब्यूटी मंत्र में, जहां मिले बेहतरीन ब्राइडल मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, स्मूथनिंग और स्किन केयर की प्रोफेशनल सेवाएं। आकर्षक ऑफर के साथ आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ब्यूटी मंत्र, पता है महिला थाना के पास, मसानगंज।
4: तो किसान भाई, जैसे हमन बात करत रहे, हमर देश राज है कृषि प्रधान देश है, जिहा के अधिकांश जनसंख्या के आजीविका कृषि में निर्भर हवे। कृषक मन ला लाभ दिए बर कृषि उत्पादन में वृद्धि करे और खेती ला आधुनिक और लाभकारी बनाए बर केंद्र और राज्य सरकार आनी बानी के योजना मन ला संचालित करते। ये जम्मो योजना मन के कृषि विकास में बड़ महत्वपूर्ण योगदान हवे। सबले पहली प्रधानमंत्री किसान सम्मान के बात करी तो ये योजना के माध्यम से पात्र किसान मन ला हर बच्छर हर साल आर्थिक सहायता दिए जाते केंद्र सरकार डहर ले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घलो प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि और अन्य जोखिम मन से फसल ला सुरक्षा देते, जेकर से किसान मन ला आर्थिक नुकसान कम होते और उमन खेती ला ज्यादा बढ़िया सुघर आत्मविश्वास के संग कर सकते। सिंचाई के आधुनिक व्यवस्था की बात करी तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य हर खेत ला पानी और पर ड्राप मोर क्राप के माध्यम से सिंचाई सुविधा के विस्तार करना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक बढ़ावा देके पानी के बचत और फसल उत्पादन में वृद्धि करेला व्यवस्था करे के उद्देश्य सरकार के हवा। तो कतको किसान भाई मन ला ए जिनिस मन के लाभ के पता नहीं रहे, उमन योजना के लाभ ला कई पैत नहीं लेवे, जबकि हर किसान ला खासकर जिन छोटे किसान है उमन ला सरकार आगू बढ़ाना चाहते। हम कतको किसान मन से मिलथन जौन किसान मन जागरूक है, उमन अपन क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से मिल के गोट बात करके अब हमन ला एक जी किसान बताए इसके मोर एक महीना के अंदर जिन ड्रिप सिंचाई वाले व्यवस्था होते आवेदन करके एक महीना अंदर वो पूरा लग गए और ओला 40% धन 60% के अनुदान उमा घलो दिए गए। तो ऐसा ऐसा व्यवस्था रही थे आनी बानी के योजना है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभ तो किसान भाई मन जिन पात्र किसान है उमन पावते छे। तो कुल मिला के ही कई बोग आज किसान मन ला अगर आगू बढ़ना है, आगू अपन खेती ला टिकाऊ करना है तो सरकारी योजना मन कृषि क्षेत्र ला ज्यादा टिकाऊ और लाभकारी बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभात हवे। अगर किसान भाई मन ये योजना मन के सही जानकारी लेवत है तो कृषि उत्पादकता, आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सरकार, कृषि वैज्ञानिक और किसान मन के संयुक्त प्रयास से कृषि क्षेत्र देश के समग्र विकास में और ज्यादा प्रभावी लाभ दे सकते है। अभी के बात करी किसान भाई मन कहत रहे हैं कि खातू माटी हमन ला कम देवत है, सरकार है कम देवत है, लेकिन अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करी तो सही में अगर हम खेत के जांच कराए तो DAP के हमारे खेत में भरभार हो गए है, जौन से लाभ हमन ला कुछ नहीं है। ओला घोरे के व्यवस्था करबो, PSB के उपयोग करबो या कम DAP देबो तो हमार फसल ला उतके उत्पादन हो ही, उतके फायदा मिले। तो किसान भाई हो, कुल मिला के ये जो योजना मन होते आपे मन भर होते, किसान भाई मन भर होते, किसान भाई मन लाभ पावे अपन आय ला ज्यादा करें और जिन कृषि में होए वाले जिन फोकट के नुकसानी है ओला कम करें ऐसा।

व्यवस्था ऐसा सोच के साथ सरकारों सोचते हम मन सोचत हन तो किसान भाई हो जौन भी योजना होते अपन तीर्थकार के कोनो भी योजना ओखर लाभ अपन आरएचओ तीर कोच कोच के पूछत रहा और लाभ ला लेत रहा। तो चला भाई देखा अब हो गए बेरा आप मन के मारू कार्यक्रम किसान वाड़ी में जाए के तो चला चला थन किसान वाड़ी में।

आज आप मन सो बात करबो। सबले पहले आप मन के स्वागत है किसानवाड़ी कार्यक्रम में। राम राम जीतू भाई के जय जोहर। आत्मनिर्भर भारत और मिठ क्रांति। किसान भाई हो, जब भी खेती किसानी के बात होते तो सबले पहले अनाज है, दलहन है, तिलहन है, चावल दाल, ये सबके नाम आते हैं। लेकिन आज देश में आनी बानी के खेती किसानी होते, आनी बानी के जैन क्रांति हो आज जाते, गुलाबी क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, सबले पहली हरित क्रांति आई, वही है हमला, हमर पूर्वज मनला, जुन्ना किसान मनला लाभ दिस। काबर ओखर बाद ले यूरिया डीएपी के उपयोग हो लगिस, मतलब केमिकल जैन फर्टिलाइजर है, उर्वरक के ऊपर उपयोग हो लगिस। आज देश में मधुमक्खी पालन घलाव है किसान मन की आय बढ़ाए के एक मजबूत माध्यम बन के उभरे हवा। एकरे कारण एला मिठ क्रांति, मतलब मीठा क्रांति कहे जाते। मीठा क्रांति के अर्थ केवल शहद उत्पादन बढ़ाना न है, बल्कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसान मन के आय बढ़ाना, रोजगार के नवा अवसर पैदा करना और फसल मन की उत्पादकता में वृद्धि करना घलाव है। मधुमक्खी परागण के काम करते हम जानथन, जेकर से सरसों, सूरजमुखी, फल और सब्जी जैसन आनी बानी के फसल मन की उपज और गुणवत्ता बेहतर होते। आज देश में राज में हमार सरकार घलो मधुमक्खी पालन ला बढ़ावा दिए बर आनी बानी की योजना चलावत है। किसान मन ला प्रशिक्षण, आधुनिक बक्सा उपकरण और विपणन के सुविधा उपलब्ध कराए जाते। एखर से ग्रामीण युवा मनला और दाई दीदी मनला, महिला मनला, स्व सहायता समूह मनला और जिन बेरोजगार मनखे है, किसान है, तेन मनला कोनो मनखे ला स्वरोजगार के अवसर मिल जाते। शहद, मधुरस के अलावा मधुमोम, परागण, रायल जेली, प्रोपोलिस जैसे कतको उत्पाद के भी बाजार में अच्छा मांग हवे। छत्तीसगढ़ सहित कतको राज्य मन में प्राकृतिक वन, फलदार वृक्ष और विविध फसल मधुमक्खी पालन पर अनुकूल वातावरण प्रदान कराते, जेखर से शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण शहद के उत्पादन संभव है। ये रही आज के बाद में आत्मनिर्भर भारत, जेमा मिठ क्रांति के बात करें, मधुमक्खी पालन के बात करें, तो जरूर आप मन अगर वो क्षेत्र में होगा जी हाँ, ये सबके सरसों के, सूरजमुखी के, वो वन तीर के क्षेत्र के होगा, तो यहाँ आप मन संपर्क करके मधुमक्खी पालन के व्यवस्था कर सका था। चला बागू बढ़वो, एक सुघर असन गीत ल सुन लेथन, जिला स्वर से सजाए हैं आसाराम पोरते ओखर संगवारी मन।

किसान भाई हो, ए रहे से सुघ्घर गीत जौन ला अपन स्वर से सजाए रहिन है आसाराम पोरते ओखर संगवारी में। अब सुनबो किसान भाई हो मशरूम राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के रेडियो रिपोर्ट, आवा चेत लगा के सुनी।

0: 2026 के ग्राम बहराडी जिला जांजगीर चांपा में आयोजित राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के रेडियो रिपोर्ट। किसान भाइयों, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु अतका सुघर है, अतका बढ़िया है कि यहाँ भारत के हिमाचल से लेके तमिलनाडु तक के जौन भी फसल होते तेन हमारे छत्तीसगढ़ में उगाए जाते। चाहे यहाँ के लीची के बात करी, चाहे बस्तर में उपजाए हुए आनी बानी के मसाला फसल की बात करी, हमर राज्य के हर जिला कुछ न कुछ जिनिस पर प्रसिद्ध हवा। हम जानथन के हमर पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा कोसा हब के नाम से जाने जाते, और आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पुटू ल लेके बढ़िया खेती किसानी घलाव करते। यही क्रम में बहराडीह जिला जांजगीर चांपा में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के आयोजन करे गए रहे से यहाँ तीर्थखार के और आसपास जिला के कतको मशरूम उत्पादक किसान मन पहुंचे रहिन हैं अपन अपन जिनिस ल लेके। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिनिधि मन घलाव आए रहिन हैं। यही क्रम में हमर गोठ होइस मशरूम महोत्सव में पहुंचे किसान मन सो आवा उखर अनुभव ला जाना था।
1: भैया राम राम।
2: राम राम।
1: क्या नाम है आपके?
2: मोर नाम दिनू सुमन पटेल है।
1: अच्छा पटेल जी, कहाँ के रह भैया आप?
2: मैं अपन बमहिंडी ब्लॉक के ग्राम मोहाडी है, सिलादेही ग्राम पंचायत के अंतर्गत।
1: अच्छा।
2: वही के मैं निवासी हूँ।
1: तो आप मन भी मशरूम के खेती करता?
2: हाँ।
1: तो कतका दिन हो गए जी?
2: लगभग मला 7 साल हो गए।
1: 7 साल हो गए।
2: हाँ।
1: कौन सा मौसम में ज्यादा उत्पादन होते? हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम होते।
2: हाँ। जैसे हमन सीजन वाइज अगर मशरूम की खेती करना चाहता, जैसे हम मानसून के सीजन ले ली जून से लेके हमन अक्टूबर या फिर नवंबर तक, जब तक ठंड ना बढ़ जाए तब तक हमन पैरा मशरूम ला आराम से उगा सकत हन।
1: मतलब वो ला आद्रता चाहिए?
2: हाँ, आद्रता चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। पैरा मशरूम ऐसे जला हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, 28 से 38 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ते है पैरा पोटूला, और नमी भी लगभग 80 से 90% नमी की जरूरत पड़ते है। ओकरे लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के मशरूम पैरा मशरूम। ओकर बाद जैसे ठंड शुरू हुई ओकर बाद हम ऑयस्टर शिफ्ट हो जाइयो। ऑयस्टर मान लो हम नवंबर से शुरू करते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक पूरा कर सकते हैं, फिर अप्रैल मई ला 2 महीना गैप दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मन के व्यवस्था है, फॉगर सिस्टम है या फिर ह्यूमिडिटी मेंटेन करे।

0: व्यवस्था है, फिर कंटिन्यू रख सकत है, या फिर 2 महीना रेस्ट देके अपन फार्म के जो मेंटेनेंस है या फिर थोड़ा रेस्ट देके ये सब चीज काम कर सकत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी,
0: धन्यवाद,
1: राम राम, जय जोहार,
0: जय जोहार
1: भैया, राम राम,
2: राम राम भैया।
1: क्या नाम है आपके?
2: शिव प्रसाद पटेल है।
1: अच्छा पटेल जी, आप कहाँ के रह भैया?
2: हमन भद्रापारा बालको नगर कोरबा छत्तीसगढ़।
1: अच्छा, आप मन यहाँ कैसे आया?
2: ये मशरूम के हमन के मतलब उत्सव है, तेकर लिए हमन आए हुए हैं, हमन ला निमंत्रण दे गए रही से।
1: अच्छा,
2: तेकर लिए हमन आए हैं।
1: अच्छा, तो मशरूम के व्यवस्था से जुड़े हैं का आप मन?
2: जी जी, मशरूम के व्यवस्था से हमन लगभग 2013 ले हमन जुड़े हवन।
1: अच्छा, मतलब 10-12 साल हो गए।
2: हाँ, 10-12 साल हो गए। मशरूम के ट्रेनिंग भी देता ना और उत्पादन भी करता।
1: तो कैसे शुरू से आप मन जुड़े हैं, कौन बताए, कैसे मन में विचार आये?
2: सबसे पहली हमन सोचत रहन जे समय 12वीं पढ़त रहन ते समय कि कोई ऐसे हमन ला बिजनेस चाहिए जे हमन के कम समय में हो, ज्यादा मुनाफा हो और जेमा कम लागत हो। और बहुत सारा सब्जी ला देखें, खेती ला देखें, तो जो भी भिंडी है, गोभी है, टमाटर है, वो बहुत ज्यादा दिन लगे। तो ओकर बाद सोचत मशरूम दिखिस, पैरा मशरूम बहुत जगह बेचाए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए और बहुत ज्यादा स्वाद भी रहे। हमन के जो पैरा रहे गाँव में ते मन निकले तो मन बनाए तो बहुत ज्यादा स्वाद एकदम
1: देसी वाले।
2: हाँ, देसी वाला। तो फिर देखा जब भी कोई भी एक टुकनी लेके आए या एक झोला लेके आए तो तुरंत खत्म हो जाए और बहुत ज्यादा महंगा रहे, 400 रुपए
1: बरसात के सीजन में।
2: हाँ, बरसात के सीजन में। तो ओकर बाद फिर दिमाग लगाएं कि यही लोग उगा लिया जाए पैरा मशरूम की खेती के लिए। फिर ओकर बाद में सर्च करें, शुरू करें सब जगह। तो 3 साल तक हमन खाली सर्चे करत रहे,
1: खोजत रहे
2: इतनी ट्रेनिंग लेवन, उतनी जान, इतनी जान, लेकिन सीखे ले नहीं मिलेगा।
1: मतलब प्यासा है, कुआं ला खोजत रहे से।
2: जी हाँ।
1: तब फिर आपके प्यास दूर कब हुई?
2: वो तो हमन के 3 साल तक घूमते रहन खाली कि बोलन कोई सिखा दे, सिखाए बताया नहीं हुए मतलब। और जे जगह भी जान सीखे बते जगह समझ जाओ, पढ़े लिखे वाला सिखाए तो फिर पढ़े लिखे वाला हो जाए। तो लगभग हमन के ना 2017 में समझ जाओ, 2017 से हमन फिर करे ले चालू करें।
1: अच्छा, शुरुआती व्यवस्था करे में का का चीज ला अपन ला जरूरत पड़ी?
2: सबसे पहली तो हमन ला खेती हमन कर नहीं है, खाली हमन सब्जी भाजी लगा था, तब पैरा के जुगाड़ करें पहली हमन।
1: अच्छा, एक चीज पूछियो, कोनो प्रकार के भी मशरूम लगावा पैरा सब में जरूरत पड़ी?
2: पैरा सब में जरूरत पड़ी, काबा की जो वास्तविक जो माइसेलियम है ना मशरूम के, तेला हमारे पैरा से ही मिल पाते अच्छा से, और वही आसानी से हमारे भारत में मिल भी जाते हैं।
1: कई जी कहते कि भाई जिन क्षेत्र में, अब हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा पैरा होते, जांजगीर चांपा क्षेत्र वैसे भी धान पर सबसे ज्यादा उत्पादन देते है ना।
2: जी जी।
1: तो कतको जगह सुने हो कि गेहूं के भूसा भी करे जाते?
2: गेहूं के भूसा में थोड़ा नमी के मात्रा ना कम रहते, काबाकि थोड़ा कड़ापन रहते ना, तो उमा नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाए ज्यादा। तो उमा ऑस्टर मशरूम उगा सका थे।
1: अच्छा,
2: ऑस्टर मशरूम उगा सका थे, बटन मशरूम के लिए खाद भी बना सका थे। अच्छा।
1: तो जिन उत्पादन करते प्राकृतिक रूप ला छोड़ दिए, तो कौन कौन सा प्रकार के, कतका प्रकार के मशरूम होते?
2: प्राकृतिक ला अगर छोड़ देबो ना तो 4 प्रकार के मशरूम खाने योग्य है, मतलब जिला हमन उगा सकत हन।
1: कौन कौन सा?
2: ये हमन के बटन मशरूम हो गए, पैरा मशरूम हो गए, मिल्की मशरूम हो गए, ऑस्टर मशरूम हो गए। लेकिन हमन के सबसे आसान जो हमन के जीवन नॉर्मल जो घर के महिला भी कर सकते हैं, हमन के एकदम नॉर्मल गरीबी स्थिति में भी शुरुआत करना चाहिए, तो 2 मशरूम है, ऑस्टर मशरूम और पैरा मशरूम, जिला आसानी से शुरुआत कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और सबसे कम दिन में होने वाला मशरूम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में तैयार हो जाइए, और दुनिया के हमन के कोई सब्जी हमन के तैयार नहीं हुए।
1: और
2: रेट तो सबसे ज्यादा महंगा है, मतलब कम दिन में होते, मतलब 300, 400, 500, रायपुर में हमन के 1000 रुपए किलो भी बेचता है।
1: जैसे रेट की बात करें, चारों मशरूम में सबसे ज्यादा रेट का कर रही है?
2: पैरा मशरूम के, और सबसे कम दिन में होते वो।
1: अच्छा,
2: सबसे कम दिन में, सबसे कम लागत।
1: कै दिन में कतका बड़ क्षेत्र में कतका किलो हो जाते हैं? बढ़िया फुरियाक बतावा।
2: जैसे हमन
1: उदाहरण स्वरूप,
2: उदाहरण के लिए हमन 10 बेड लगा था, ठीक है, 10 बेड में हमन के लागत लगभग 300-400 रुपए।
1: बेड के साइज का रही थे?
2: बेड के साइज हमन के अलग अलग साइज भी रहते, 9 बंडल, 10 बंडल के भी बना सकते आदमी, 13 बंडल के भी बना सकते, हमन बना था 17 बंडल के।
1: ठीक,
2: 17 बंडल में जैसे हमन के एक बेड में अगर हमन के लगभग लागत हमन के 40-50 रुपए आते, अगर घर में खुद के पैरा है तो लगभग 35 रुपए खर्चा ही
1: बस।
2: हाँ, 35 रुपए खर्चा ही, अगर अच्छा से अगर नॉलेज हावे वाला, अच्छा से अगर देख रेख करते है, अच्छा से अगर नमी बना पाते, तो आराम से वो 1 किलो उत्पादन कर सकते है।
1: 1 किलो के पैरा के रेट का चली?
2: 300-400 रुपए, 300 रुपए किलो में बेचता थोक में,
1: मतलब वो 250 रुपया के आप मतलब फायदा हो गए। और कई दिन में हो गए
2: वो? 8-10 दिन, 12 दिन में,
1: मतलब सबसे जल्दी उत्पादन हो गया भाजी से भी कम दिन में।
2: भाजी कुछ भी चीज से, मतलब मशरूम कोई भी चीज नहीं है, मतलब

0: धनिया भी यहाँ तक के मेथी पालक कुछ भी नहीं है समझ जाओ, जो अधिकतम हमने मानता है 15 दिन की खेती, 15 दिन में मतलब खत्म हो जाते हैं।
1: आपके कहाँ नाम है?
2: मोर नाम सर उत्तम पटेल हवे।
1: कहाँ के रहे भैया आप?
2: मैं सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के।
1: बिलासपुर ले यहाँ है ना?
2: हाँ बिलासपुर ले। आज जो मशरूम महोत्सव हो थे राज्य स्तरीय, उसमें यादव जी के निमंत्रण में हम यहाँ पहुँचे हवन।
1: आप भी लंबा समय से मशरूम उत्पादन से जुड़े हुए हैं, लोगन ला ट्रेनिंग देते था, एक जानकारी बढ़िया देवा, कब से आप मन शुरू करे है, कैसे शुरू करे, कैसे मन माइस?
2: तो जीतू भाई हमला जो मशरूम के खेती करते हुए लगभग 10 ले 12 साल हो गए। 2014-15 से हमन जो है मशरूम के खेती करा था थन। सबले पहले हमन शुरुआत करें मशरूम खेती के, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में पैरा पुटू जो है सबले ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, लोग मन जानते हैं। कब पैरा पुटू ले हमन बचपन से जाना था, जब हम पैरा पुटू की खेती नहीं करते रहे नगर पहली बार पैरावाट में बरसात के दिन में ऑटोमेटिक निकल जाए, तो सुबह सुबह मन का है पैरा पुटू ले बार जो है चल देवन, ठीक है। तो हमन देखें कि भाई पैरा पुटू जो है प्राकृतिक रूप से जब प्रोडक्शन होते ओला हमन कृत्रिम रूप से भी जो है प्रोडक्शन करके अच्छा प्रॉफिट ले सकत हम, तो क्यों ना है कि एला थोड़ा सा मन आय के अपन साधन बने। और धीरे धीरे हमन एक क्षेत्र में जो है रिसर्च करे गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र ले और अलग अलग जगह लेकर बारे में जानकारी पता करे गए हैं, तो फिर हमन जो है पैरा मशरूम की खेती चालू करें। पैरा मशरूम के बाद अलग अलग जो मशरूम रही से, जैसे कि आप मन के ऑस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, मिल्की मशरूम है, कुछ मेडिसिनल मशरूम हवे, इमन के बारे में धीरे धीरे पता करें। और आज के समय में 5 ले 6 प्रकार के मशरूम के मन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हमारा जरूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ एक ठो लैब होना चाहिए। एक्चुअल में होते का जीतू भैया कि जो मशरूम रथे ओकर जो बीजा हर थे वो बीजा ला ऐसे नॉर्मल बीजा नहीं रहे, मतलब ओकर बा फफूंद यानी कि मशरूम जो रहते ओकर स्पॉन बनाए जाते, जैसे आप मन के केला के देखिया कि टिश्यू कल्चर तैयार किया जाते, ठीक उसी प्रकार से हमार जो मशरूम रहते ओकर जो बीज रहते ओकर भी टिश्यू कल्चर तैयार किया जाते। तो आज के समय में हमारे महसूस हुई कि भाई हमारे आस पास में कोई बढ़िया ढंग के लैब नहीं है जो हमारा बढ़िया क्वालिटी के बीज दे। तो 2020-21 में कोरोना के बाद में हमन जो है हमार खुद के बिलासपुर मशरूम लैब नाम से मशरूम स्पॉन लैब की स्थापना करें, जिनमें आज हमन 4 ले 5 प्रकार के मशरूम के बीजा बनत हन। लगभग हर महीना 30 ले 40 जी किसान ला हमन जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करत हन। हमार कुछ ट्रेनिंग है पेड भी रहते, कुछ ट्रेनिंग है फ्री भी रहते, डिपेंड ऑन की कस्टमर ला कैसा सुविधा चाहिए।
1: कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति उमा राठौर जी मन अपन बात ला कार्यक्रम ऊपर रखिन।
3: हमन आजकल अत्याधुनिक जीवन की ओर पश्चात सभ्यता की ओर सब बढ़त हन, लेकिन हमन पुराना जीवन पद्धति में ही हमन के शरीर और मानसिक आत्मिक सुख है। बहराड़ी जो गांव है जैविक खेती के लिए पुराना मैं अत्याधुनिक नवीनीकरण में का है बीमारी बहुत ज्यादा हो।
1: आज हम देखा था कैंसर बढ़त जाते
3: और हमारे जो पुराना खेती पद्धति से जैविक खाद डालन खेत में ओकर से उत्पादन भी बढ़िया हो हमारे शरीर भी बढ़िया
1: रहे।
3: और अभी का है हमला रेडीमेड चाहिए हर चीज, तो रेडीमेड जैसे पैकेट में दूध आते वो का के बनाते, कैसे गाय गरुआ है ही नहीं है जमीन में, रोज के रोज पनीर बिका थे, रोज के रोज घी बिका थे, रोज के रोज आनी बानी के चीज बिका थे,
1: ज्यादा मात्रा में बिका थे,
3: ज्यादा मात्रा में खा तो जरूर है हमन, लेकिन वह ओकर शरीर के नुकसान होते। जो कैंसर दुर्लभ बीमारी रिसे थे आज हर जगह देखे व मिला थे, तो हमला पुनः अपन पुराना पद्धति की ओर जाए पड़ी, अपन पुराना संस्कृति की ओर जाए पड़ी। आज भी हमारे गांव में वो सब चीज है, बस हमला थोड़ा मेहनत करे की जरूरत है, जेकर से हमन के मानव जीवन सुंदर और स्वच्छ और स्वास्थ्य प्रदाय रहे। आज विशेष कार्यक्रम है मशरूम के,
4: समूह के उद्देश्य होते हैं गांव के आखिरी छोर में बसे मनखे मल्ला समूह में जोड़ के मल्ला आनी बनी के बूता काम दिलाना कहके। आपके माध्यम से देखिए कहीं कहीं आपके गांव के लोगन मल्ला रोजगार तो मिला था, आप एक महिला होने के नाते आप मन लगभग 8 से 9 गांव में अपन जाता दूर दराज काम बूता में जाता था।
5: मैं तो अपन आप लोग बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं बहनी दीदी मन कर जो है मिलता हूँ और हर दीदी मन के जो है सुख दुख में शामिल होता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि बिहान योजना के माँ दीदी मन के हर के घर में जानता हूँ। मैं पहले तो केवल अपन पंचायत भवन में भी नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज मैं 8-9 गाँव में घूमता हूँ और दीदी मन के साथ हमन के क्लस्टर है, क्लस्टर के बैठक ब्लॉक में भी बैठक होते, कभी कभी जिला माँ जिला सीओ कलेक्टर संघ में भी हमन के बैठक होते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बिहान योजना में जुड़े हूँ और समूह के दीदी मल्ला भी प्रेरित करता हूँ और मैं खुद आत्मनिर्भर महिला बन चुके हूँ। एकाली बहुत बहुत धन्यवाद।
4: एक बार ऐसे रहे कि हमारा जो जरूरत पड़ा है टिकली सिंदूर स्नो पाउडर के, तो का है हमारा अपन घर वाला कर पैसा कौड़ी मांगन। आज ऐसे हो गया कि हम खुद अपन पैसा में घर परिवार चलाते हैं, साग नून

0: आवाथन का लगते, किसे लगते, का खुशी जाहिर होती ला बताता।
1: इत परिवार मा हमन अपन के जो बचत है ओला हमन घर चलाए बा पैसा ला 2 पैसा दे सकत हन। बहुत बड़ी खुशी बात है। हमन के पास में ऐसा रहे कि हमन 10 रुपया ला भी अपन हस्बैंड करा मांगन। अभी है कि हमन 10 हजार रुपया ला अगर आवश्यकता पड़त है घर परिवार ला, है ना, कछु चीज हो जाते तो जरूरत में हमन काम पड़त हन ओमन ला सहयोग करत हन घर परिवार की स्थिति ला सुधारे बर। बहुत अच्छा है। जैसे स्कूल के फीस होइस या फिर छोटे मोटे राशन के सामान, छोटे मोटे जरूरत या फिर खुद के जैसे साड़ी टिकली वगैरह लेना है तो हमन आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सब चीज में।
2: मोर नाम श्याम भाई साहू है। ग्राम पंचायत लाड़ी कला के रहने वाली हूँ। मैं गांव स्तर में कृषि सखी के काम करता हूँ। जैसे कि किसान मन अपन धान वाना ला लूथे, ओकर बाद में चल देते कमाए, लेकिन वो धान ल के पैरा ला इकट्ठा करके या फिर ओला गोबर खाद बना करके ओला अच्छा से ओला वर्मी कंपोस्ट के रूप दे सकत है, या फिर ओला बोरा में भी तैयार करके सेलिंग कर सकत है। ओमा भी अच्छा वो मन के आमदनी हो सकत है। और जो धान ला हमन डायरेक्ट ला बेचथन ओला अपन घर में बचा के अगर हमन ओला बीज ला उच्चारित करके या फिर प्रमाणित करके ओला बेचा थन तो हमन ला जो सोसाइटी रेट है ओकर से डबल रेट में जाही, तो ओकर इनकम डबल हो जाही। तो ओला अगर चाही तो वह बाहर जाए के ओला जरूरत नहीं पड़े।
0: गांव में आज भी मैं देखो तो जैसे बाहर जावा था लोग लेकर पढ़ाई लिखाई है मार खाते हैं, नहीं तो वो लोगों मतलब कैसे संदेश देना चाहिए ला बतावा ना।
2: बाहर जाए के तो आवश्यकता है नहीं है, तो उमन के लिए ये संदेश है कि आप उमन अगर अच्छा से इनकम लेना चाहते तो खेत से ही ले सकते है। धान लू के सकथन ओकर बाद जो पैरा रखे रहते वहाँ हार्वेस्टर में कटिंग हो रहा थे ओकर बाद में पैरा ला जला दिए जाते, तो वहाँ गाय बछड़ू मन के नुकसान होते खाना पीना के लिए और प्रकृति ला भी नुकसान होते। तो वो भाई मन से निवेदन है कि वो अपन पैरा ला जलाए मत, ओला इकट्ठा करके खाद बना सकत है या फिर वही बिछा करके एक प्रकार के केमिकल आते ओला डाल ली ना स्प्रेयर के माँ के माध्यम से, तो पैरा हा पूरा मतलब खाद बन जाही।
0: तो यही क्रम में आज हमारे बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक हवा ये मन है कृषि विज्ञान केंद्र जहांगीर के केडी महंत, तो अब संगवारी में कर गोड़ बात करते हैं। राम राम।
3: राम राम।
0: आज के मशरूम महोत्सव हुआ थे
3: जी,
0: एक बारे में बताता आप।
3: बहुत अच्छा विषय है। आज जांजगीर चांपा जिला एक गौरव के रूप में जुड़ा थे और ये गौरव में कई प्रकार के अतिथि मन, कई प्रकार के किसान मन जो मशरूम से जुड़े हुए किसान भाई मन पहुंचा थे। राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव एक अपने आप में गौरव है। हमारे जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया मशरूम उत्पादन के जिला के रूप में जाना जाते। साथ ही साथ आप लोग बताना चाहता हूँ कि 300 से 400 प्रकार के ऐसे मशरूम है जिला हम खा भी सकते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के मशरूम की खेती हमारे जांजगीर चांपा जिला में होते। बड़ा अच्छा अवसर है कि आसपास के जिला के किसान भी छत्तीसगढ़ के हमारे रायगढ़ जिला से, हमारे महासमुंद से, बड़ौदा बाजार से, शक्ति जिला से, बिलासपुर, रायपुर के हर प्रकार के अनुभवी किसान मन आज पहुंचा थे। सबसे बात बताना चाहूं मैं, मशरूम एक ऐसे व्यवसाय है जो खेती ला एक अलग रोजगार के रूप में व्यवस्थित करते। 5,000 से लेकर 7,000 के मिनिमम कास्ट से तैयारी से लेकर अगर कोई किसान भाई ला अपना ही तो निश्चित रूप से ओला 1 साल में ओला 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बिना कोई संसाधन, बिना कोई खेत, अपन घर में छोटा सा कुटिया के माध्यम से ला अपन पैरा के संसाधन उपयोग करते हुए अपन जो भी संसाधन है वो थोड़े से तकनीकी रूप से ओला जानकारी दे थन तो निश्चित रूप से किसान भाई मन बहुत अच्छा आमदनी कमाते है। हमारे जिला में ऐसे ऐसे किसान भी है जो मशरूम उत्पादक मशरूम बाबा के नाम से जानते हैं मशरूम ला, और ये कृषि विज्ञान केंद्र के एक बहुत अच्छा अवसर है जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे विशेषज्ञ हमन किसान भाई वाला तकनीकी जानकारी देते हैं ओकर लाभ भी उठाते। मशरूम के बीज कैसे लगाना है, पैरा ला कैसे उपचारित करना है, कब मशरूम की तोड़ाई करना है, कब सिंचाई करना है, सिंचाई करने के बाद मशरूम ला कौन सी अवस्था में कतका दिन तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, बाजार वैल्यू ला कैसे बढ़ाना है, साथ ही साथ मशरूम उत्पादन हो जाते ओकर प्रसंस्करण के बहुत ज्यादा हमला लाभ लेना चाहिए। जैसे मशरूम के पाउडर, मशरूम के अचार, मशरूम के बड़ी, अनेक प्रकार के व्यंजन मशरूम से, मशरूम के टिकिया, बिस्किट, बहुत सारे उत्पाद जो है अब बाजार में मिलते हैं। मैं किसान भाई और किसान दीदी वाला बार बार निवेदन कर रहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त करो और इसमें जो है आकाशवाणी बिलासपुर और हमारे जो दूरदर्शन और साथ ही साथ कई प्रकार के मीडिया के बंधुमन ये प्रचार प्रसार में आज राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव में पधारे हैं। वो वाला मैं आप बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये किसान स्कूल है बहराडी में आयोजित होते और किसान वाड़ी गांव के कार्यक्रम में आज खेत बचाओ अभियान भी चला थे, मशरूम महोत्सव भी चला थे, संतुलित उर्वरक ला कैसे प्रबंधन करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, किसान मतलब जन जागरूकता के माध्यम से कैसे बढ़ाना है, मशरूम ला व्यवसाय के रूप में खेती के धान के खेती के साथ कैसे एक मजबूत धंधा के रूप में अपनाना है, विषय के बारे में चर्चा करबो और वैज्ञानिक ढंग से किसान भाई वाला प्रशिक्षण के माध्यम से

0: रोजगार ला आगे बढ़ाए बर हमर कृषि विज्ञान केंद्र के जत का वैज्ञानिक हर वो बल्ला हमार मजबूती के साथ आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। जी
1: बात करबो जांजगीर चांपा जिला ला कृषि प्रधान जिला के नाम से जाने जाते हैं। भारत के नक्शा में आज कहीं कहीं जांजगीर चांपा जिला ला सबसे ज्यादा सिंचाई के क्षेत्र में जाने जाते हैं। एक नवा मुहिम आज देखे मिला थी यहाँ मशरूम महोत्सव में, तो क्या नवा रूप हो ही एला बताता।
0: हाँ बहुत अच्छा नवाचार है, काबर यहाँ धान के खेती ज्यादा होते और पैरा के बहुत ज्यादा मात्रा जो है एक किसान भाई मन वेस्ट रूप में जला देते। पशुधन भी धीरे धीरे कम होते, तो पशुधन ला हमारा बढ़ाना है तो पैरा ला ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करके अगर धचू की हमर करा एक प्लस पॉइंट भी है, सिंचाई के साधन भी है, तो धान की खेती बहुतायत से इजिली ढंग से हो जाते। ओकर बार हमारा चाहिए कि धान की खेती ला कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाबो। एक बार हमारे मशरूम जो है बहुत बड़े हमारे साधन के रूप में आज हमारे जांजगीर चांपा जिला में आगे बढ़ाते। आज जो युवा भटका थे, युवा जो कृषि ला छोड़ के दूसरे राज्य ला कमाए खाए बजा थे, ओकर बर रोके बर आज आप जैसे युवा किसान भाई बल्ला मैं प्रेरणा देत हूँ। मैं बल्ला बताना चाहत हूँ कि ये समय जो है बहुत ही कठिन समय भी है और एक अवसर भी बना थे। एकर बार एक मशरूम जो है एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। जांजगीर चांपा जिला के तापमान जो है उड़ीसा से लगे हुए, आंध्र प्रदेश से लगे हुए राज्य से समीप, ओकर बार हमारे जो ह्यूमिडिटी जो है हमारे मशरूम में पैरापुटू और आस्टर मशरूम के अद्भुत संभावना है। वो संभावना ला देखे बार जानकारी लेने बार हमारे कई प्रकार के जो प्रशिक्षणार्थी है, हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रशिक्षणार्थी है, अलग अलग क्षेत्र के ये बनाते हैं। तो जांजगीर चांपा जिला मशरूम की खेती पर बहुत ही अच्छा अवसर दे थे और एक बार हमला ज्यादा से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और आप सब के माध्यम से जो युवा है वो मल्ला हमला बताना पड़ी और जोड़े पर पड़ी कि आज खेती ला एक लाभदारी व्यवसाय बनाए बार मशरूम एक बहुत बड़ा संसाधन बन सकते है।
1: इतना बड़ी जानकारी बताए कर बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार पंचू भैया।
2: तो किसान भाई हो ये सुने हन स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाड़ी गांव में ग्राम बहराड़ी विकास खंड और ये जिन रही से हमर जांजगीर चांपा जिला मशरूम महोत्सव मनाए गए सुहा और संयोजन और प्रस्तुति रही से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के, संपादन रिकॉर्डिंग रही से हमर पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर के। त आगू बढ़बो और आप मनला आज के जिन मौसम के जानकारी है, हाल चाल है तेनला बताबो। आज के अधिकतम तापमान दर्ज करी गई 30.0 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रही से 25.4 डिग्री सेल्सियस। आगू के व्यवस्था बताए तो कल परन दिन नरन दिन और 11, 12, 13 तारीख तक चमक के संग बादर पानी गिरे के संभावना है। तो देखभाल के अपन जौन भी आप मन के काम बूता रही वाला भाई करिया आप मन है ना। और मौसम कति चलबो तो मौसम ले ज्यादा तो आज हमला साग सब्जी के जेन व्यवस्था है ओखर जानकारी नहीं मिले। धान महामाया के आप मतलब बिलासपुर और आसपास के मंडी के रेट बता दी तो 2115 के आसपास के रेट कटिस है। धान महामाया कतको क्षेत्र के मंडी मन में ऊपरों रेट गए है 2300-2400 रुपया और MTU सरना 1010 दिन होते मोटा धान ओखर रेट 1850 1860 से 1870 के रेट है चलिस। ते हो इस संगवारी हो किसान भाई हो मंडी के और मौसम के जानकारी ताब मनला यही कही बो कि सरकारी योजना मन के लाभ लेना है जौन हाँ कृषि उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करते, किसान मन के आय बढ़ाए में सहायता करते, प्राकृतिक आपदा मन से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते, आधुनिक तकनीक के बात करें कृषि यंत्र के उपयोग बढ़ाते तो हमू लाभ ली और साग सब्जी के व्यवस्था करें, जल संरक्षण सूक्ष्म सिंचाई ला बढ़ावा दी, जैविक और प्राकृतिक खेती ला प्रोत्साहन दी, हमू मन कृषि विपणन और बेहतर मूल्य पाए बर ऐसा सुघर सुघर व्यवस्था करी। तो देखा घड़ी के टिक टिक है सारा करे थे कि बेरा हो गए जीतू भाई तो चले जाए। तो आप मन बढ़िया स्वस्थ रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा और जिन परन दिन के व्यवस्था है आप मन लहूल बता दी कि जिन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम के विषय रही जैव नियंत्रक कारक से खरीफ फसल में उपयोग ओखर महत्व और 11:30 से 11:30 बजे तक के विषय रही जैव उर्वरक के खरीफ फसल में उपयोग और महत्व। एकर जानकारी दिए बर बिलासपुर कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री जयंत साहू जी उपस्थित रही। तो आप मन बढ़िया नेटवर्क क्षेत्र में जाके फोन करी है और सवाल ला लिख ले है और कापी किताब कापी और पेन धर के बैठ के आप मन सलाह सवाल के आप मन फोन लगा। तो देवा विदा कार्यक्रम ले राम राम जय जोहार।

किसान वाणी, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं आशा भोसले। पेश है आशा भोसले के स्वर में गुलजार की लिखी ये रचना।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं आशा भोसले।

0: आशा भोसले की गाय इस नज्म के साथ ही सुगम संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप।

0: जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मानस तिवारी का नमस्कार।

श्रोताओं, इस गीत में जो आवाज थी पुरुष गायक की, उस आवाज को हमारा ये विश्वास है कि आपने पहचान ही लिया होगा कि आज रजनीगंधा में हम बातें कर रहे हैं पार्श्व गायक नितिन मुकेश जी की। अपनी भावपूर्ण आवाज के लिए हम सभी उन्हें जानते और मानते हैं, और 80 और 90 के दशक में उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से गीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई और सदाबहार गीतों की श्रृंखला हमें दी।

पार्श्व गायक नितिन मुकेश 27 जून 1950 को पार्श्व गायक मुकेश जी के परिवार में जन्मे थे और पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश दिलाया गया और वे पढ़ाई में लग गए, पर विधाता को कुछ और मंजूर था। पिता पार्श्व गायक मुकेश की मृत्यु होने के बाद नितिन मुकेश पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आए। गायकी में आने से पहले नितिन मुकेश ने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ नमक हराम फिल्म में बतौर सहायक निर्देशक कार्य किया था। यहाँ ये भी बताना लाजिमी होगा कि मेरा नाम जोकर फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी गाने की कुछ पंक्तियों को गाया था और मुख्य गायक के रूप में नितिन मुकेश को पहचान मिली 1974 की फिल्म धुएं की लकीर से।

वर्ष 1980 से 90 के दशक में नितिन मुकेश जी ने खयाम, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, भप्पी लहरी, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद जैसे मशहूर संगीत निर्देशकों के साथ अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अभिनेताओं की बात करें तो मनोज कुमार, शशि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे कई सुप्रसिद्ध अभिनेताओं को उन्होंने अपनी आवाज से नवाजा।

अपने पिता से गायकी में जो विरासत मिली थी, नितिन मुकेश ने उसे तो संभाला ही, साथ ही साथ अपने संघर्ष और साधना से उन्होंने दर्शकों के दिलों में पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेश

0: में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी

0: योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालोरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़े विविध भारती प्रसारण से।

0: कोई प्यार की देखे जादूगरी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कोहिनूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शकील बदायनी ने इसे लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुजाता फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, एसटी वर्मन ने धुन बनाई थी। इस गीत के पहले आपने किशोर कुमार की आवाज में एक गीत सुना था जिसे हमने लिया था फिल्म एक राज से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। और अब सुजाता फिल्म के इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे।

के अलावा एक और क्रांति हुई थी, और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद

के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल विश्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल विश्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935, अनिल विश्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल विश्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल विश्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: और तुम?
1: सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल विश्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम, फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल विश्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं, वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आपके साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली

एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: region during the next 2 days. In FIFA World Cup round of 16 match between defending champions Argentina and Egypt is underway in Atlanta. Egypt was leading 1-0 when the reports last came in. In Kerala, 3 people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kaladi in Mepadi, Wayanad, following heavy rainfall today. 9 workers who were trapped underground were rescued and shifted to the government medical hospital, Mepadi. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण संपन्न होता है। कल प्रातः अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति